मुस्कान छोटी सी चीज है, लेकिन किसी के पूरे दिन को बदल सकती है। आज किसी को एक मुस्कान दीजिए, किसी का हौसला बढ़ाइए और देखिए खुशी आपके पास भी लौट कर आएगी।

हवा की तरह जीवन भी लगातार आगे बढ़ता रहता है, वहीं कहीं रुकता नहीं। इसलिए हमें भी मुश्किलों के सामने रुकना नहीं चाहिए। रास्ते बदल सकते हैं, मंजिल नहीं, बस कदम चलते रहने चाहिए।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मुझे दीजिए अनुमति, जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
2: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
0: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राज

शेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

చిరు చెయ్యేస్తే చినిగి చినిగి చాటైపోదు, చిరు చెయ్యేస్తే

0: ಬೇ ಕಿನಾರ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ರಘುಕುಮಾರ್ ರಾಠೋರ್ ಸಾಹಬ್ ಆವಾಜ್ ಮೇ ಔರ್ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಕಿ ಆವಾಜ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಖೂಬ್ಸೂರತ್ ಸಾ ಗೀತ ಹೈ ಜೋ ಹರ್ ಯುವಾ ಸೇ ಯೇ ಕಹ ರಹಾ ಹೈ ಕಿ ದೇಶ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕುಛ್ ಭೀ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಹಮೇಶಾ ತಯಾರ್ ರಹೋ.
1: पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत. कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा.
2: साहस, अनुशासन, राष्ट्र सेवा, ये वो गुण है जो हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है. और जब इन मूल्यों में नारी शक्ति का अदम्य साहस और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जुड़ जाता है तो एक प्रेरक गाथा बन जाती है. ऐसी ही एक प्रेरक गाथा के बारे में आज हम बात करेंगे IASV त्रिवेणी समुद्र प्रदक्षिणा की, जिसमें पहली बार सेना के तीनों अंगों की महिलाओं ने हिस्सा लिया और समुद्र प्रदक्षिणा की. तो ये अभियान कैसा रहा, क्या चुनौतियां रही, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे. हमारे साथ हैं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और साथ में है मेजर प्राजक्ता पी निकम. आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में.
3: थैंक यू वेरी मच.
2: शुरुआत करें, आगाज करें इस कार्यक्रम का. तो सबसे पहले जब आपको एक्सपीडिशन के बारे में, इस अभियान के बारे में पता चला, तो व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट इन योर माइंड
4: कि ऐसा भी कोई एडवेंचर होता है क्या? अच्छा. टू इमेजिन कि आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएंगे और उससे पहले कभी फॉरेन कंट्री तक नहीं गए थे. तो वो जो ख्याल है कि पूरी दुनिया का चक्कर, वो नाम ही इतना बड़ा था कि लगा कि नहीं, ये तो करके देखने की ये चीज क्या होती है.
2: विभा जी और वैशाली जी, वायुसेना से आप हैं, तो आपने हमेशा बादलों के बीच उड़ान भरी है, लेकिन इस बार समुद्र के बीच लहरों के साथ आपको सफर करना था. तो वैशाली जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या वो हलचल रही मन में जब आपको पता चला?
5: तो एक नॉर्मल डे की बात है, हम ऑफिस में बैठे हैं, ये सिग्नल आता है कि सेलिंग के लिए चुनाव हो रहे हैं और 3 सर्विसेज से लिया जा रहा है. पहले तो वो ही अविश्वसनीय था मेरे लिए. रही बात भाई एयरफोर्स से सेलिंग की, हर कोई नहीं समझ पाता, यही पूछते हैं कि एयरफोर्स से होकर सेलिंग कर रहे हो, वो भी इंडियन आर्मी के साथ, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यही एक मैसेज है सबके लिए कि ये पॉसिबल है. और यही नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल आज के टाइम में हमारे देश में और ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है.
2: जी, और टीम स्पिरिट से ये सब पॉसिबल हुआ. प्राजक्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मन में क्या उस समय जहन में था जब आपका सिलेक्शन हुआ? तो ये सिलेक्शन कैसे आपको एकदम से बताया गया, या आपने अपने बारे में बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इस अभियान के लिए?
6: एक्चुअली ये जो एक्सपीडिशन है, इसकी प्रिपरेशंस 3-4 साल पहले स्टार्ट हुई है. तो 3 साल का हमारा सिलेक्शन रहा है, एंड 1 ईयर आप ले लो 10 मंथ्स फॉर आर एक्सपीडिशन टू यू नो स्टार्ट एंड फिनिश. तो इनिशियली इट वाज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस. तो 41 वुमेन ऑफिसर्स एंड एक अग्निवीर हमारे साथ थे, और हम 42 टोटली थे फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज, जिन्होंने 3 फेजेज ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स कम्प्लीट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स. तो उसके बाद जाके फिर ये फाइनल टीम सेलेक्ट हुई है 9 वुमेन ऑफिसर्स की फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी. पहले तो चलो हमारा ट्रेनिंग ही चल रहा था, बट जिस दिन पता चला कि अब जाने का टाइम आ गया है, तो उस टाइम ऐसे लगा कि अब तो गए. तो लिट एक्चुअली बिकॉज इट इज़ अ मैसिव थिंग, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग टू यू नो गो अराउंड द वर्ल्ड. तो इनिशियल फियर तो रहता ही है.
2: आपसे जाना चाहूंगी विभा जी, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग का पार्ट, क्योंकि आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको आर्मी के जब आपने ट्रेनिंग ली होगी तब भी आपको मिली होगी, लेकिन इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई?
4: देखिए, अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो जो हमारी सेलिंग थी वो छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी. हमें समुद्र में 9 से 10 महीने रहना था. इसका मतलब कि हमको तैयार करना था मानसिक, शारीरिक एंड एज अ टीम ऑल्सो. तो जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो एकेडमी की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर एज डिफेंस फोर्सेस जिस तरीके से हमको ट्रेन किया जाता है, यस, वो काफी हद तक

0: हमारे काम आई, क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत कॉमन होती है. लेकिन समुद्र में इस एक्सपीडिशन को करने के लिए एडिशनल हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई. जैसे हम सबको याद है कि हम सुबह 5 बजे उठते थे और 1.5 घंटे तक भागना, दौड़ना, रस्सी चढ़ना, पुशअप, पुलअप, मतलब हर बॉडी की एक एक मसल को इतना स्ट्रांग बनाया गया है कि जब आप समुद्र में रहोगे तो आपको किसी तरीके की तकलीफ ना आए. फिर दूसरा, ट्रेनिंग को इतना कठिन इसलिए किया गया बिकॉज समुद्र में आप खुद हो, आपके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है. फिर रही बात, हम सब में से किसी को सेलिंग आती नहीं थी, तो इसका मतलब हमें बोट क्या होती है, कैसे चलाते हैं, हवा को कैसे पढ़ते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं, समुद्र में अगर दूसरे शिप्स हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये एक एक चीज हमें पढ़ाई गई. और उसके बाद टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ टीम आप वहां पे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारी टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज हुई.
1: जी स्क्वाड्रन लीडर वैशाली, आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो दी गई और थोड़ा सा और ज़्यादा इंटेंसिव दी गई इसमें, लेकिन जो सबसे ज़रूरी होती है आपकी मेंटल ट्रेनिंग, क्योंकि आप कई बार आपको ट्रेन किया जाता है लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपको लगता है शायद दिस वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, तो कुछ ऐसा अलग रहा आपको, तो मेंटल ट्रेनिंग भी फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह से काम आई आपके एक्सपेडिशन में?
2: Being from a defense background or wearing a uniform itself, be it army, navy or air force, mentally strong होने की हमें already training दी जाती है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ काम आई. थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि endurance और stamina, कि महीनों महीनों तक कुछ ना दिखना, कोई कलर ना दिखना, कोई पक्षी ना दिखना, इंसान ना दिखना, और महीनों बाद कोई एक शिप भी दिख जाती है तो उसमें भी बहुत खुशी होती है कि आज हमने एक शिप देखी, और उसकी बात पूरे 1-1.5 दिन तक करते रहना कि आज हमने रेड कलर की एक शिप देखी करके. तो वो चीज़ ट्रेनिंग करते करते, सेलिंग करते करते बढ़ाई गई. अकेलापन फील होना, उसकी जो फाइट होती है वो हमने सेलिंग करते करते ही सीखी. बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आई फील कि था, बाकी सेम.
1: मेजर प्राजक्ता, आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि जैसे अब आप फिजिकल ट्रेनिंग भी, मेंटल ट्रेनिंग भी, फिर भी उसको सस्टेन करना और अपने एक ना आत्मविश्वास बनाए रखना, नहीं हम कर लेंगे, तो ऐसे भी कुछ पल आए उस समय जब आप एक्सपेडिशन पर थी?
3: ऐसा नहीं था कि हम हर रोज़ जब उठ रहे हैं कि हम मोटिवेटेड फील करें कि आज तो भाई एकदम जोश में है हम, ऐसा नहीं था. बहुत सारे दिन थे जब हम इतने टायर्ड थे, रात रात तक हम कुछ रिपेयर कर रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, अगले दिन इतना फटीग है हम में. एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन, इनफैक्ट पहले भी, बिफोर फ्लैग ऑफ हुआ हमारा, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जब हमें लगा है कि हम जा पाएंगे या नहीं, क्या हम कर पाएंगे या नहीं. बट बिकॉज 9 लोगों का एक ही मिशन था, एक ही गोल था, सो दैट यू नो मोटिवेट्स यू. इवन अगर आप एक दिन, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, तो आई नो कि बाकी हैं हु विल लिफ्ट मी अप.
1: टीम वर्क काम आई इस पूरे एक्सपेडिशन में. विंग कमांडर विभा जी, जैसे उन्होंने कहा कि वैशाली जी ने कि शिप एक दिख जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, और हम सभी के जहन में ये है कि आप लोग एक शिप में गए हैं, बहुत आरामदायक थी जिसमें सभी सुविधाएं थी, तो क्या वाकई में ऐसा था या आपको और भी कई इसको लेकर भी, उठने, जागने, सोने को लेकर भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
0: जनरली हम फोर्सेस में तो हमारे पास खाना खाने के लिए एक मेस होती है, हमें एक अकोमोडेशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा. तो जैसे जब मेरे घर वालों पूछते थे कि अच्छा आज मेस में क्या बना है, बिकॉज शिप में भी एक मेस होती है, डाइनिंग हॉल होता है जहाँ आप खाते हो, तो मैंने कहा मेस नहीं है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ एक खड़े होने की जगह होती है. फिर उन्होंने पूछा अच्छा कुक अच्छा खाना बनाता है, हमने कहा कोई कुक नहीं होता है. हमारा लिविंग एरिया था एक 50 फीट लंबी बोट और 15 फीट चौड़ी, इसी में हमारी पूरी दुनिया थी. और धीरे धीरे जब हम उस बोट में रहे तो हमको ये भी इतना लंबा लगता था कि अरे वाह हमारे पास कितनी ज्यादा जगह है. और अगर दिनचर्या की बात करेंगे तो वो जो बोट है वो बहुत छोटी है, तो जब समुद्र की लहरें या विंड होता है तो बोट कभी सीधी नहीं चलती है. तो उसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक दिन बताइए, तो उसमें सोना, खाना, पीना, जागना, कुछ भी एक जो नॉर्मल इंसान करता है वैसा नहीं होता है. एक तो समुद्र में वैसे ही आपकी बॉडी के रिएक्शन बहुत स्लो हो जाते हैं बिकॉज कंडीशंस बहुत हार्श होती है, और उसमें हम खुद ही खाना बना रहे हैं, तो मौसम अच्छा हो खराब हो उसके हिसाब से खाना बनता था. धरती पे खड़े होने का, सीधे खड़े होने का जो आनंद है, और वो 6 घंटे की नींद लेने का जो आनंद है, और वो कहते हैं जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स, ये हमने बोट पे रह के सीखा.
1: जैसे खाने के बारे में आपने बताया

0: आप लोग तीनों अलग अलग कोने से हैं तो सबका जो उसका जो टेस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा. तो किसकी पसंद का खाना बनता था, कैसे बनता था?
1: फॉर्चुनेटली हमारे बोट में ऐसे टीम मेंबर्स थे जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, और जब हम कहते हैं बहुत अच्छा, वो ऐसा नहीं कि खाना बनाना अच्छा था, वो उनका पैशन था. तो यहाँ पे जो ये प्राजक्ता जी बैठी है, हम वेट करते थे कि ये मदर ऑफ द बोट, मतलब वो क्रू मेंबर जो उस दिन तीनों टाइम का खाना बनाएगा. तो जब पता चलता था कि हाँ भाई आज प्राजक्ता जी की ड्यूटी है, तो पूरा दिन सब यही पूछते थे आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा. प्राजक्ता जी ने बोट में, समुद्र में हालत खराब है, सबको सी सिकनेस हो रही है, मतलब उल्टियां लग रही है, बट इन्होंने हमें छोले आलू टिक्की चाट खिला दी और हम
0: दिन
1: आपको
0: बन गया.
1: दिन महीने बन गए.
0: ये है, मतलब जब आप ट्रैवल करते हैं तो जैसे सी सिकनेस की बात की तो इस तरह से कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आप बताएं वैशाली जी किस तरह से उसको आपने हैंडल किया? तो कोई वहां पे कोई स्वास्थ्य चिकित्सक भी था आपके साथ जिसने आपको मदद की इस दौरान?
2: हमने मेडिकल वाइज जो हमने इश्यूज फेस किए हैं, मोस्टली इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो सी सिकनेस है, फीवर है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हैं उसमें जो तबीयत ख़राब होती है, और इट इज़ योर मंथली साइकिल. दीज आर द काइंड ऑफ इश्यूज दैट वी हैव फेस्ड. एंड वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी एक क्रू मेंबर, एक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है हु इज़ ट्रेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स. तो बिसाइड्स वो सेलिंग तो कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ ही उनकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबका बोट में ख्याल रखना. वो उनका रहना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता था. वो उस हालत में आने ही नहीं देती थी हमें कि हम बिल्कुल ही बेड में पड़ जाएं. शी यूज टू टॉक टू अस, पता करना एवरी डे आज कैसा फील हो रहा है, आज कैसा फील हो रहा है. प्लस थैंक गॉड ऐसी कोई आपदा नहीं आई, मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई जिसकी वजह से हमें डिटोर करना पड़े या कोई बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाए.
0: तो आप कुल 9 लोग थे, मेजर प्रोजेक्ट था, तो किस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था? क्योंकि आपको 24 घंटे रात दिन काम करना है, सेलिंग करनी है, तो कौन कैसे किस तरह से जिम्मेदारी निभाता था?
3: तो बोट पे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 6 ऑफिसर्स होते थे. उसमें से एक, मतलब एवरी डे देर वॉज अ मदर ऑफ द बोट, तो हम 6 में से वो रोटेट होते रहते थे. बाकी जो 5 बचे उनमें से 2 ऑफिसर्स, मतलब दो दो ऑफिसर्स की ड्यूटी होती थी, तो वो रोटेशनल बेसिस पे होती थी. एंड ऐसा नहीं है कि किसी एक, जैसे कि आई एम स्पेशलाइज इन समथिंग और मैम इज स्पेशलाइज इन समथिंग, वी ऑल नो एवरी थिंग. तो हमको सब चीज़ में ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो साफ सफाई हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, हम सबको सब आता है. तो वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता था. इट वॉज नॉट कि एक ही पर्सन पे लोड आए,
0: तो दिस
3: दैट
0: वाज
3: इज
0: द
3: अ
0: बेस्ट पार्ट कि सबको सब कुछ
3: सब
0: मालूम
3: कुछ.
0: था ताकि किसी
3: हाँ
0: तरह की दिक्कत ना आए.
3: यस.
0: तो आपका जब ये एक्सपीडिशन था तो आप किन किन जगहों से गुजरी, कहाँ कहाँ से गए आप?
1: देखिए जब हम सरकम नेविगेशन की बात करते हैं, तो सरकम नेविगेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं. उन्हीं क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना रूट प्लान किया था. तो हम इंडिया से सबसे पहले गए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पे हमें केप लुइन क्रॉस करना था. ऑस्ट्रेलिया में हम गए फ्रीमेंटल, फिर फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया से हमारा अगला था पोर्ट ऑफ कॉल लिटिलटन न्यूजीलैंड में. लेकिन इस दौरान क्या हुआ, जब हम जा रहे थे हम एक स्टॉर्म में फंस गए और हमारा सेल फट गया, और उस सेल के बिना हम आगे नहीं जा सकते थे. तो लकीली हमने एक पास में एक आइलैंड था तस्मानिया करके, वहाँ पे हमने हॉल्ट लिया. वो अनप्लान्ड था बट वहाँ पे हम रुके, हमने अपना सेल रिपेयर किया और फिर हम आगे बढ़े न्यूजीलैंड की तरफ. न्यूजीलैंड से फिर हम गए अर्जेंटीना, ब्यूनोस आयरिस, क्योंकि हमें सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में केप हॉर्न करके एक जगह है जिसको ड्रेक्स पैसेज भी कहा जाता है, वो क्रॉस करना अगेन मैंडेटरी होता है. उसको क्रॉस करते हुए हम ब्यूनोस आयरिस पहुंचे अर्जेंटीना में. फिर वहां से हम गए साउथ अफ्रीका के केप टाउन में. केप टाउन से इंडिया आते हुए जो हमारा थर्ड ग्रेट केप होता है जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हुए फिर हम वापस इंडिया में मुंबई आ गए. तो हमारा एक्सपीडिशन मुंबई से शुरू हुआ और फिर मुंबई पे ही आके खत्म हुआ.
0: विभा जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने 2 बार इक्वेटर को पार किया, सदर, एक बार सदर्न हेमिस्फेयर फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रही होंगी आपने, बहुत ह्यूमिड भी, गर्मी का मौसम भी देखा होगा और बहुत ही ठंड का मौसम भी देखा होगा. तो उस जो वेदर कंडीशंस को फेस किस तरह से किया और मन में क्या दुकदुकी चल रही थी?
1: अभी भी जैसे हम आए हैं, कोई हमसे पूछता है कि आप सब तो 1 साल सेलिंग करके आ गए बट आपके चेहरों में कहीं लग नहीं रहा है कि आपको टैनिंग हुई है. हम उसका यही आंसर देते हैं कि हम 8 महीने इतने लेयर ऑफ क्लोथ्स हम पहन के सेलिंग करके आए हैं, हमारे शरीर का कोई हिस्सा एक्सपोज ही नहीं हुआ. हमने जब

0: इंडिया से शुरू किया तो मौसम गर्म था, लेकिन रात को हल्की हल्की ठंड होती थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले थे उस टाइम पे ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी, तो हम दो दो लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनते थे। उसके बाद आप ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से अर्जेंटीना, जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में गए थे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं आपको बताती हूँ, हम सर पे जितने कपड़े आ सकते थे हम उतने पहनते थे, और अब वो अगर हम काउंट करेंगे उनको तो सर पे 3 लेयर, हाथों में ग्लव्स की 3 लेयर, ऊपर 5 लेयर, 3 लेयर इनर की, उसके ऊपर फ्लीस एंड विंटर एंड वाटरप्रूफ जैकेट, सेम नीचे सॉक्स के 3 पेयर और शूज। जब हम अपनी ड्यूटी करने जाते थे तो हम इतने पैक हो जाते थे कि हम चल भी नहीं पाते थे। और उस वेदर में जैसे ही आप बाहर जाओगे, बाहर आप मानिए कि हवा की गति 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलमोस्ट, और 0 डिग्री की हवा जब आप पे लगेगी 5 मिनट में हमारे हाथ सुन्न हो जाते थे। अगर हम अपनी ड्यूटी को एक्सटेंड भी करना चाहते थे, मान लीजिए 1 घंटा, हमारे हाथ इतने सुन्न होते थे कि हम वापस अंदर आते थे, गैस पे अपने हाथ सेकते थे ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो बन पाए। एक इंसिडेंट मैं आपको इस चीज का बताना चाहूंगी, हमारा सेल फट गया था, तो जब हमारा सेल फटा तो हमें वो चेंज करना था। चेंज करने के लिए अब क्या है कि उसमें आपको हुक्स लगाने पड़ते हैं, मैन्युअली वो चेंज करनी थी, और हुक्स हमने जब ग्लव से लगाने की कोशिश की तो नहीं लग पाए क्योंकि ग्लव्स में फिंगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। 3 ग्लव्स से हमने अपने ग्लव्स उतारे और हाथ एकदम सुन। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की कि मेरे हाथ सुन हो जाए। और कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, ऊपर से कॉन्टिन्यूस आपके ऊपर पानी गिरता है, तो जितने भी आपने लेयर्स पहने हैं वो हमेशा अंदर तक भीगे रहते हैं। तो हमने फाइनली फिर हाथों में पैरों में पॉलिथिन्स पहनना शुरू किया कि पानी और स्किन का थोड़ा सा टच बचे और हमारे हाथ थोड़ा लेट नम हो। तो ये वेदर था एक्सट्रीम,
1: मतलब एक तो पानी की लहरें, ठंड और हवा, और उसके बाद अगर बरसात आ जाए तो बताइए वैशाली जी, उस समय कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा हो कि ऐसा भी कुछ हुआ था? और जैसे अभी तो हम हंस रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या हाल था?
2: नहीं नहीं, उस समय हमने ऐसे दिन देखे हैं जब हफ्तों हफ्तों बारिश हो रही थी, तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हाँ ठंड थी, लेयर्स पहने हैं, गीले हो गए हैं, अभी आप 4 घंटे की ड्यूटी करके गए हो और 6 घंटे बाद आपको दोबारा ड्यूटी पे आना है क्योंकि रोटेशन ऐसे ही चलता है, 6 घंटे में आपके कपड़े नहीं सूखेंगे, तो आपको वही गीले कपड़े पहन के फिर 4 घंटे आना है, फिर आपको गीला होना है, फिर अगले 6 घंटे आपके वो कपड़े नहीं सूखेंगे। तो हमने शायद हफ्ता ऐसे ही निकाला होगा कि बारिश भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, बट आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप वैसे ही पहन के बैठे रहो, और जब आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है तो विद इन 2 मिनट्स यू हैव चेंज्ड और आप एक गर्म कपड़े में आके, आपको कोई भगवान आके गरम गरम चाय पिला देता है। ऊपर से अगर बारिश पीछे से आ रही है तो इट इज स्टिल फाइन, आपको डायरेक्ट नहीं लग रही, बट अगर आपको सामने से बारिश आ रही है एंड यू आर गोइंग एट अ स्पीड, तो वो एकदम सुई की तरह चुभती है। अब आप आंख भी नहीं खोल पा रहे हो तो आप देखोगे क्या, तो विजिबिलिटी वैसे ही पुअर है क्योंकि बारिश हो रही है, उसमें आप जो बचा कुचा दिख रहा है वो भी आप पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे हो क्योंकि बारिश का पानी आपको आंखें खोलने ही नहीं दे रही है। तो आप मतलब ऐसा था कि 15 सेकंड आप ऊपर देखोगे फिर नीचे देखोगे, उस तरह से हमें 4 घंटे बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था।
1: तो मेजर प्राजक्ता, आपका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि जैसे अगर हवा आ रही है सामने से बहुत तेज आ रही है तो आपको शायद कई बार ऐसा भी हुआ होगा डायरेक्शन चेंज करनी होगी, लंबा रास्ता भी तय करना पड़ा होगा, तो इस तरह की भी आपने समस्या देखी?
3: हमारी बोट चलती ही सिर्फ विंड पावर पे, तो हम अपना डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज ही करना पड़ता था। तो काफी बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत नॉटिकल माइल्स दूर चले गए हैं अपने जहाँ पे हमने पहुंचना है एग्जैक्ट वे पॉइंट से, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कभी उल्टा भी निकल गए बिकॉज हवा ही नहीं है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन फील होता था, बट फिर हम कुछ कर नहीं सकते उस
0: ड्यूरेशन में। एक्सट्रीम देखा है हमने, एक्सट्रीम मतलब जीरो हवा भी देखी है, जैसे इन्होंने बताया कि हम पीछे जा रहे हैं, पानी हमको पीछे धकेल के ले गया, और हमने 60 नॉट्स ऑफ विंड मतलब ऑलमोस्ट 100+ किलोमीटर पर आर का विंड भी देखा जब हमारी बोट ऑलमोस्ट पानी के अंदर जाने वाली थी, और एकदम इतनी गर्मी भी देखी है कि हम सब एकदम पसीना पसीना, और इतनी सर्दी भी देखी है कि हमारे हाथ जम गए।
3: ये गर्मी और सर्दी वाला मैं आपको जस्ट एक्सट्रीम का आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल दिस थिंग, सदर्न ओशन में जब हम थे, मैम ने जैसे बताया इतनी ठंडी थी कि हमारे बोन्स तक दर्द होने लग जाते थे। आई हैव सर्वड इन 3rd stage हाई ऑल्टीट्यूड, उधर भी बहुत ठंडी होती है। आई हैव सर्वड इन लद्दाख, वहां पे मैंने ठंड देखी है, बट वो ठंड मेरे को बहुत कम लगी कम्पेयर टू व्हाट वी विटनेस्ड हियर। एंड एक्सट्रीम गर्मी का मैं बताऊं, हमारे लिए पाउडर हमारा बेस्ट

0: फ्रेंड बन गया था, हम गले से लेके एंकल तक सिर्फ पाउडर में ही होते थे।
1: आप बताएं स्क्वाड्रन लीडर वैशाली की, बट नाउ वुमेन आर दे आर अनस्टॉपेबल, ठीक है, तो बीइंग अ वुमेन व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू फेस्ड?
0: मैं फ्रैंकली ये बताना चाहूँगी, नॉट टू एग्जैजरेट, मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसी कोई डिफिकल्टी आई है। जो मैंने लड़कों को करते हुए देखा है वही एग्जैक्ट चीज़ हमने करी है। हाँ, अगर मैं पहले से ये बना के चलती कि अब मैं पीरियड्स में कैसे करूँगी, मुझे एक कंफर्ट जोन चाहिए और नहीं मुझे नहाना है, अगर इफ़ आई एम ट्रेन्ड इन दैट मेंटेलिटी एंड इफ आई कंटिन्यू टू वर्क इन दैट मेंटेलिटी, ऑब्वियसली इट बी इट सेलिंग और एनी अदर एक्टिविटी आई विल नेवर बी एबल टू डू इट। बट हम हमेशा से ट्रेन ही लड़कों के साथ हुए हैं, हम ट्रेन ही वैसे हुए हैं एज लाइक वी आर इक्वल। इट इज़ जस्ट अबाउट दैट मेंटल स्ट्रांगनेस टफनेस विच वी से, वो हमने कंटिन्यू रखी।
1: विंग कमांडर, जैसे आप लोग वायुसेना से हैं, आप थल सेना से हैं, तो वहां का भी जो कुछ अनुभव आपके सेलिंग के दौरान काम आया हो, एक्सपेडिशन में काम आया हो?
2: अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो अनडाउटली इंडियन नेवी का पानी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, तो उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की, गाइड किया कैसे करना है क्या करना है। इंडियन आर्मी का अगर कहेंगे तो भारत में जो सेलिंग की शुरुआत हुई थी वो इंडियन आर्मी से ही हुई थी। पहला जो दुनिया का चक्कर लगा के बोट आई थी वो इंडियन आर्मी की ही थी, तो इंडियन आर्मी के पास वो एक्सपीरियंस भी था। और अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जो जिस तरीके का मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग इनकी होती है, अनडाउटली वो हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमें उसी तरीके से ट्रेन किया गया। ट्रेन इस तरीके से किया गया कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं। तो ये जो तीनों सर्विसेज का आपस में जो कोर वैल्यूज लेके टीम बना के गए थे, कहीं ना कहीं इन सब ने मिलके इस एक्सपीडिशन को सफल बनाया है।
1: तो जैसे इतनी चैलेंजेस थे इस आपाधापी में, आपने क्या अपने परिवार वालों से बात की मेजर प्राजक्ता? मतलब ऐसा भी कुछ मोमेंट आया कि शायद अब याद आ रही है उनकी?
0: हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे बोट पे, एक तो था हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन था, एंड प्लस वी हैव समथिंग नोन एज फ्लीट ब्रॉडबैंड जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। बट एक महीने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 GB डेटा होता था, एंड उसमें हमें रिपोर्ट्स भेजनी होती थी, हमारी ऑल ओके रिपोर्ट या कुछ ख़राब हो गया उसका रिपोर्ट रिपोर्टिंग होती थी, एंड प्लस हम उस पर वेदर अपडेट लेते थे अपना। एंड फिर बचा हुआ कुछ टाइम हम अपने हर ऑफिसर को 5 5 मिनट या 10 10 मैक्सिमम मिल जाता था घर पे बात करने के लिए। बट ऐसे भी बहुत बार दिन हुए कि नेटवर्क ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, एंड बात नहीं हो पा रही है। तो रहा है, बहुत बार टाइम लगा है ऐसे कि यार घर वाले क्या सोच रहे होंगे, बट फिर उनको खुशी होती थी कि अगर कॉल नहीं आया है, बिकॉज अगर कॉल आया और अगर हमने बोला कि आज ऐसा ऐसा हो गया तो उनको और टेंशन हो जाती थी। तो इट वॉज बेटर फॉर देम कि वी हैव नॉट गिवन देम अ कॉल।
1: तो आपने वैशाली जी, आपने कभी अपने पेरेंट्स से बात की और बताया कि आज ऐसा हुआ, आपका मन किया मैं
0: नहीं,
1: बताऊं?
0: बिल्कुल भी नहीं। व्हाट हैपेंस ऑन द बोट स्टेज ऑन द
1: तो
0: बोट।
1: स्ट्रांग लेडी, मतलब ये है नारी शक्ति, आज की नारी है जो अपने एक्सपीरियंस को, अपने साहस को साथ लेते हुए अकेले लड़ना जानती है और अकेले चलना जानती है। टीम भावना जब हो तो उसके साथ सबको लेकर साथ चलते हैं। मतलब आपका पड़ाव भी था, जैसे पोर्ट कॉल कहते हैं जिसको, 4 देशों में रुका, तो उस दौरान क्या किया गया, कैसा आपको, क्योंकि आप ऐतिहासिक अभियान पर थी, तो उस समय कैसा गर्व की भावना आप में आई?
2: देखिए, पोर्ट ऑफ कॉल जो हमने हॉल्ट्स लिए थे, जैसे हमने आपको अपनी बोट के बारे में बताया कि लिमिटेड स्पेस है और एक्सपीडिशन बहुत लंबा था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बोट के जो रिपेयर, रिप्लेनिशमेंट, राशनिंग एंड रेस्ट एंड रिकूप ऑफ द क्रू, ये चीज़ों को ध्यान में रख के हमने पोर्ट ऑफ कॉल्स लिए थे। अब वो जो पोर्ट ऑफ कॉल में जब आप जा रहे हैं, देखिए, जैसे हर भारतीय का सपना होता है कि जब आप अपने राष्ट्र ध्वज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें, तो जब हम इन 4 कंट्रीज में गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका, और वहाँ पे आप अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट हमने अपनी लाइफ में फील नहीं किया। जैसे जब हम अर्जेंटीना में गए थे, वहाँ पे जो उनका नेवल बैंड था, उन्होंने हमारे लिए राष्ट्रगान बजाया था, और हम सब की आंखों में गर्व था और खुशी के आंसू थे कि आज हमने अपने राष्ट्र को दूसरे कंट्री में प्राउड फील कराया है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि भारत ऑफशोर सेलिंग, जैसे इस तरीके के एक्सपीडिशंस में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है, और फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत कल्चर है। तो आप इंडिया से उनके कंट्री में जा रहे हो, और हमने किया ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज, तो वो जो लोग थे वो हक्के बक्के थे कि इंडिया में विमेन को पूरे दुनिया का चक्कर लगाने भेज दिया, तो वो जो एक स्टेटमेंट होता है ना कि हम अपने कंट्री को एज अ वुमेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और

0: ऐसी चीज कर रहे हैं जो उनके देश ने भी नहीं की, वो अमेज थे। तो वो फीलिंग जो होती है कि आई एम अ इंडियन एंड आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, ये लाइफ लॉन्ग फीलिंग और एहसास है जो हम पूरी जिंदगी अपने साथ रखेंगे।
1: आपने एहसास उस समय फील किया, आप मुझे बता रही है, मतलब आई हैव गूज बम्स कि आप सोचो आपको कितना अच्छा लगा होगा। और जैसे विशाली जी खुशी के आंसू कह रहे थे, मतलब खुशी के आंसू आए, दर्द से और कठिनाई से चुनौतियों का सामना करते हुए वो आंसू नहीं आए।
2: उसके कभी नहीं।
1: नानी संदेश साहस का, आपने आत्मविश्वास का परिचय दिया इस अभियान में, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो मरीन पोल्यूशन को लेकर, आप बताएं मेजर प्राजक्ता किन किन बातों का ध्यान रखा?
2: सो मेनली हमारा जो वेस्टेज होता था वाज आप मान लो सैनिटरी वेस्ट वन, एंड मेजरली इट यूज्ड टू बी हमारा फूड या जो भी हम पानी पी रहे हैं। तो हमारे पास प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होती थी तो हम उसको क्रश करते थे अब, एंड उसको हम हमारे पास अभी जब हम हर एक पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे तो हमारे पास चार बड़े बड़े गार्बेज बैग्स भर जाते थे क्योंकि हम फेंकते नहीं थे वो प्लास्टिक को पानी में। एंड जब हम पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे वहां पे हम डिस्पोज ऑफ करते थे।
1: तो ये बहुत बड़ा संदेश है मतलब सभी के लिए। जी वैशाली जी, 314 दिन लंबा आपका ये एक्सपीडिशन था, तो जरा ऐसा कुछ मेमोरेबल आपका जो क्षण रहा हो, यादगार क्षण जो आप बताना चाहें?
3: बहुत सारे ऐसे दिन होते थे, वेदर खराब है, कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ टूट गया है, कभी बादल है, बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, वो लगातार चलता रहता था। तो जो मिजरी है ना वो इतनी कॉमन हो गई थी कि वो बुरा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जिस दिन सूरज निकलता था और हवा बिल्कुल एप्ट जो बोलते हैं ना कि ना कम है ना ज़्यादा है, जो एंजॉय करने लायक वो हवा है वो होती थी, वो मुझे याद है, वो सनसेट, वो हाथ में एक कॉफ़ी और गाना, क्योंकि उस दिन धूप निकली थी तो हमारे पास पावर थी कि हमें गाना सुन सके, वो एक 5-10 मिनट का जो टाइम था, और बोट बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रही है, वेदर खराब नहीं है, क्रैश नहीं हो रही, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही, वो दिन बहुत ही अच्छा यादगार दिन था और वो मेरे ख्याल से वो लाइफ लॉन्ग आगे जाएगा।
1: आपका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऐसा कुछ मोमेंट जो यहाँ रहा हो?
2: हम मैम और मैं दोनों साथ में ही थे उस टाइम पे, एंड दिस वॉज वेन वी वर कमिंग टू मुंबई फ्रॉम केप टाउन, एंड मॉर्निंग आई थिंक 5:30-6 o'clock की बात है, हमें होराइजन पे सनराइज होता हुआ दिख रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन मे को आवाज़ आती है, बहुत कुछ तो उछल रहा है पानी में, और बहुत ही दूर है ये क्योंकि एकदम शांत है, हवा भी नहीं चल रही थी उस टाइम पे। तो दूर हमने देखा ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉल्फिन्स, एक लाइन से हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ तो उछलता उछलता उछलता हमारे सामने से वो ऐसे निकले, दे आर प्रोबेबली माइग्रेटिंग क्योंकि इतने सारे थे, हमने कभी इतने सारे देखे ही नहीं है।
1: सच अ ब्यूटीफुल
0: एक्सपीरियंस।
1: तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि आप आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहें?
0: मेरे हिसाब से ये कि जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी होता है और सपने सच भी होते हैं, बस आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
1: वैशाली जी, जो सरकार है वो महिला नेतृत्व विकास पर जोर दे रही है और वो हर फील्ड में दिख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: लड़के लड़कियां, मैं सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, फौज ज्वाइन करनी चाहिए, बी इट आर्मी नेवी और द एयरफोर्स, किसी को भी सर्व करो, यू सर्व द नेशन, यू कम यू एक्सपीरियंस दिस। सो फॉर ऑल द यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां, एवरीवन, दे शुड ज्वाइन द फोर्सेस।
1: जी, आप क्या कहना चाहेंगे मेजर प्राजक्ता, आपके शब्द?
2: I would like to say कि success comes with hard work, perseverance and most importantly not having an ego. This is something which my father used to tell me and this has stayed with me because I have a letter जो उन्होंने मेरे को दिया था, and जब मैंने ये expedition start किया था तो मैंने वो letter लेके गई थी, and that is what kept me going through this entire
1: time. Yes. मतलब अच्छा था आप लोगों का एक्सपीडिशन, आप लोगों की गाथा सुनने से निसंदेह सभी को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, उनको भी जो आगे अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। आप तीनों का धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आकाशवाणी से जुड़ी और अपने अनुभव हमसे साझा किए।
4: पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं प्रियंका अरोड़ा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है

Namaste, hello, Adab Hyderabad. Such a lovely morning it is because I am getting to spend my time with all of you today. Hope आपका अभी तक का वीक अच्छा जा रहा है. अगर नहीं, फिर भी कोई टेंशन नहीं है. बाकी का पूरा वीक पड़ा है उसे ठीक करने में. पर अभी फिलहाल हम अपना शो एन्जॉय करते हैं. अंदर की नमस्कारम, वेलकम टू नमस्ते हेलो आदाब, एंड कीप लिसनिंग टू रेनबो एफएम 101.9 विथ मी योर आरजे निधि. आई हैव गॉट सो मच टू टॉक टू एंड सो मेनी सॉन्ग्स आर लाइंड अप फॉर यू ऑल.

बिजली गिराने में हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। वेलकम बैक टू नमस्ते हेलो आदाब डियर लिसनर्स। आज ये गाने का पीछे का रीज़न क्या है पता है तुम लोगों को? वेल फर्स्टली दिस इज़ माय फेवरेट सॉन्ग एंड द एक्सप्रेशंस ऑफ श्रीदेवी जी इन दिस सॉन्ग आर प्योर मैजिक। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम याद कर रहे हैं इंडियन सिनेमा की उस चांदनी को जिन्होंने लाखों दिलों पर राज किया है। Yes, I am talking about the legendary Sridevi ji whose birth anniversary is today, yani August 13th. आपको पता है कि श्रीदेवी जी को अक्सर India's first female superstar कहा जाता है क्योंकि उनका करियर सिर्फ एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं था। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी हर जगह अपनी एक्टिंग का जादू चलाया है। और भी बातें करते रहेंगे, सुनते रहिए रेनबो FM 101.9 आपकी अपनी RJ निधि के साथ।

ना कहीं जगह बनाने में कामयाब रही है। सो गाइस, आज के दिन चलिए उनकी कोई फेवरेट मूवी देखते हैं या उनका कोई गाना सुनते हैं, जस्ट लाइक अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू हर। शी हैज़ डन ओवर 300 फिल्म इन 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड इट्स जस्ट वाओ। यू आर लिसनिंग टू नमस्ते हेलो आदाब ऑन रेनबो FM 101.9 विथ मी योर आरजे निधि।

वेलकम बैक टू नमस्ते हेलो आदाब डियर लिसनर्स, मैं हूँ आपकी आरजे निधि और आप सुन रहे हो रेनबो एफएम 101.9। सो या वी हैव दिस अपडेट दैट पार्लियामेंट हैज़ ऑफिशियली क्लियर द केरला बिल 2026। द राज्यसभा गेव इट्स फाइनल नॉट टुडे फॉलोइंग द लोकसभा क्लियरेंस, बट इसके पीछे का स्टोरी क्या है ये आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ। अगर आप मलयालम बात करते हो तो This isn't new at all. Back home, Kerala हमेशा केरलम के तरह रेफर किया जाता था। However, the first schedule of Indian Constitution जब ड्राफ्ट हुआ था, केरला इंग्लिश में रिकॉर्ड किया गया था इंस्टेड ऑफ केरलम। तब से ये करेक्शन के लिए केरला लेजिस्लेटिव असेंबली यूनानिमस रेजोल्यूशंस पास कर रहे थे, फर्स्ट इन 2023 एंड अगेन इन 2024, ताकि गवर्नमेंट अपना ऑफिशियल करेक्शन अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करे। फाइनली दिस ईयर नाउ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज कम्प्लीट, ब्रिंगिंग द ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी इन लाइन विद द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चरल हेरिटेज।

0: dish has a tale to tell of its roots, of its rich legacy, and about the goodness within it. From royal recipes to timeless streetside favorites, discover the stories behind your loved foods on Jashne Hyderabad on Rainbow FM at 2 p.m. every day. Jashne Hyderabad, where food is served on air.
1: हेलो माय डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हो रेनबो एफएम 101.9 और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे निधि। चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसी मुद्दे पे जो लिटरली हम हर रोज़ देखते हैं सड़कों पे या हम खुद भी वो सर्विसेज यूज़ करते हैं, जो है बाइक टैक्सीज। वेल, हमारे शहरों में ट्रैफिक इतना है कि यूजिंग कार और ऑटो एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक में हम फंस ही जाते हैं। बट देन जो बाइक टैक्सीज है वो एक तरह के हीरो के वैसा वो ट्रैफिक में से थोड़ा इजीली निकल जाते हैं और अपना टाइम भी सेव होता है। और दूसरी बात जो है, ऑटो और कैब के मुकाबले बाइक टैक्सी बहुत सस्ती होती है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो इससे सस्ता ऑप्शन कोई नहीं है। एंड यू नो, बाइक टैक्सी से सिर्फ अपना ही फ़ायदा नहीं, वो बाइक चलाने वालों का भी फ़ायदा है, स्टूडेंट्स या वर्कर्स जो भी है पार्ट टाइम करते हैं। चलिए, अब तक बहुत सारे पॉजिटिव्स के बारे में बात करें हैं, अभी और ढेर सारे बातें करेंगे। तब तक सुनते रहिए रेनबो एफएम 101.9 विथ मी योर आरजे निधि।

वेलकम बैक डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हो नमस्ते हेलो आदाब ऑन रेनबो एफएम 101.9 विथ मी योर आरजे निधि। सो या वी वर टॉकिंग अबाउट बाइक टैक्सीज। जैसे हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, बाइक टैक्सी के भी कौन से, सबसे बड़ा इशू सेफ्टी। यू नो द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर लिटिल हाई कंपेयर टू अदर मोड्स। गर्मी हो या बारिश हो या पोल्यूशन हो, बाइक पर आप बिल्कुल एक्सपोज रहते हो। एंड ऑन अ होल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी बाइक टैक्सी प्रेफरेबल नहीं होता है। एंड यू नो समथिंग, कर्नाटका गवर्नमेंट जो है बाइक टैक्सी के बिल्कुल खिलाफ है करेंटली। ये मुद्दे पे तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है कर्नाटका में। सवाल ये है कि आखिर कर्नाटका गवर्नमेंट बाइक टैक्सीज के खिलाफ क्यों है, इसके बारे में हम जल्दी डिस्कस करेंगे। मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेनबो एफएम 101.9।

दैट वॉज तुम ही हो बंधु फ्रॉम कॉकटेल। तो या हम बात कर रहे थे अबाउट बाइक टैक्सी एंड कर्नाटका गवर्नमेंट अपोजिंग इट। तो सबसे पहला और बड़ा आर्ग्यूमेंट ये है कि बाइक टैक्सीज हैव नो सेफ्टी मेजर्स, स्पेशली वेमेन सेफ्टी को लेकर गवर्नमेंट और कोच दोनों ही वरीड है। एंड स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से रोड एक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा जान टू व्हीलर राइडर्स या उनके पीछे बैठने वालों की ही जाती है। तो सबका ये कहना है कि जब एक्सीडेंट का खतरा इतना हाई है तो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए बाइक्स को खुला छोड़ देना एक पब्लिक हेल्थ हजार्ड है। देन देर आर ऑल्सो इंश्योरेंस इश्यूज एंड फाइनली बैंगलोर के ट्रैफिक के बारे में तो

सब जानते हैं। सो गवर्नमेंट का मानना यह है कि इस ट्रैफिक में अगर बिना कोई लिमिट के टू व्हीलर्स को अलाव किया जा रहा है तो डबल ट्रैफिक हो जाता है, इंस्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ कर सकते हैं। सो या दैट वॉज बाइक टैक्सीज एंड कर्नाटका गवर्नमेंट इश्यूज ओवर बाइक टैक्सीज। यू आर लिसनिंग टू रेनबो FM 101.9 विथ मी योर आरजे निधि।

So that was Attention by Charlie Puth for you all, and hope आपका समय नमस्ते हेलो आदाब में बहुत ही अच्छे से गुजर रहा है. अभी कुछ समय में हम न्यूज़ हेडलाइंस देखेंगे. सुनते रहिए रेनबो FM 101.9. मैं हूँ आपकी अपनी RJ निधि.

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इस दौरान लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई।

0: भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
1: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग में सुधारों की मांग को लेकर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। संगठन के नेता ने बताया कि सरकार द्वारा आयोग में सुधार

0: मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग में सुधारों की मांग को लेकर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। संगठन के नेता ने बताया कि सरकार द्वारा आयोग में सुधार के लिए एक समिति गठित किए जाने के बाद यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। संगठन ने 6 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
1: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। आज वे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 124 अंक गिरकर 77,843 जबकि निफ्टी 78 अंक घटकर 24,358 पर था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। उधर महिला सिंगल्स में कोको गोफ और ईगा स्वियातेक ने फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha has been adjourned sine die. The monsoon session, which began on the 20th of last month, concluded today after 19 sittings spread over 25 days. The House witnessed discussions on a wide range of legislative and national issues. Several important bills, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, the Tribunals Reforms Bill 2026, the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 and the Kerala Alteration of Name Bill 2026 were passed. However, the session also saw repeated disruptions over the issue of students' protests over the NEET paper leak, alleged police action against protesting students and alleged anomalies in Ayodhya Ram Temple donation. Parliament has passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfil the country's growing demand for critical minerals. The bill also seeks to take under its control the regulation of mineral-bearing lands having mineral contents in accordance with the parameters prescribed under the Mines and Minerals Development and Regulation Act. The BJP today accused the opposition parties of ignoring the issue faced by students in Punjab and Jharkhand. Addressing a press conference in New Delhi, BJP spokesperson Dr. Sudhanshu Trivedi claimed that the opposition parties are creating a ruckus in Parliament only to avoid the questions on student issues of Jharkhand and Punjab. The spokesperson also alleged the senior Congress leader and leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has remained silent on the Jharkhand students' issues.

से ना हो पाएगा। कौन बोला

वेलकम बैक डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हो रेनबो एफएम 101.9 और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे निधि और हम हैं नमस्ते हेलो आदाब शो पे। दोस्तों, जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे यानी 2047 में, तो हमारा भारत कैसा होना चाहिए? 2047 एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां देश को हर फील्ड में नंबर वन बनना है। इंडिया का 88th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस में युवा शक्ति सेंट्रल टीम है जो रोल ऑफ यंग सिटीजन्स को हाईलाइट करता है इन अचीविंग द विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2047। वेल, इट इज़ ऑल अबाउट अस। हम यूथ है देश का फ्यूचर। ऑनेस्टली, इस देश का यूथ में बहुत सारा पावर है, लेकिन दोस्तों, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब आपके पास इतनी शक्ति हो तो डायरेक्शन सही होना ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों पे एम्फसाइज करने के लिए युवा शक्ति का थीम गवर्नमेंट सामने लाया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई सपना है, तो रुकिए मत, क्योंकि ये वक्त आगे बढ़ने का है, नए रिकॉर्ड्स बनाने का है और देश को एक नया मुकाम पे ले जाने का है। आज हम सब यूथ मिलके जो भी कदम लेंगे, वही कल के इंडिया की फाउंडेशन बनेगी। तो चलिए अपनी युवा शक्ति को पहचानते हैं और देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। साथ ही सुनते रहिए रेनबो एफएम 101.9।

0: हेलो डियर लिसनर्स। तो अभी स्टूडियो क्लॉक में टाइम है 12:59, यानी नमस्ते हेलो आदाब से हेलो रेनबो को जाने का टाइम आ गया है। मैं कुछ ही समय में आपको हेलो रेनबो के टॉपिक्स बताऊंगी। सुनते रहिए रेनबो FM 101.9 विथ मी योर आरजे निधि।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: हेलो रेनबो पे आप सबका स्वागत है। तो अब तक हम बात कर रहे थे अबाउट यूवी शक्ति, जो इस साल का थीम है, और हमारा फोन इन एग्जैक्टली इसी बात पे है। आपके इस थीम पर क्या विचार है, और आप आने वाले समय में इंडिया में ऐसी कौन सी मेजर चेंज देखना चाहते हैं? ई ईयर मन थीम युवा शक्ति पाई मी ओपिनियन सेंटी एंड मीरू कमिंग इयर्स लो इंडिया लो यलांटी मेजर चेंजेस चूड़ाली अनुकुंटुन्नारु। सो या लेट मी नो योर ओपिनियंस ऑन आर थीम दिस ईयर, दैट इज यू शक्ति, एंड And what is that one major change you would want to see in India in the coming years? You can call us on our numbers 0402323-0030, 0402323-4821, 0402970-4715. मैं आप सबका इंतज़ार कर रही हूँ।
1: Hey, very hungry. What's special today?
2: Biryani, kebabs, haleem. But wait, there's more.
3: More than food, it's the stories behind the recipes, the history of the kitchens and the flavors that shaped our city.
1: And where do we taste all these?
2: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
3: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
4: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.
0: वेलकम बैक टू हेलो रेनबो। चलिए हम अपने कॉलर से बातें करते हैं। हेलो
5: जी, आई एम मंगा बास्कर, सिकंदराबाद से बात कर रहे हैं। कैसा है आप?
0: नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
5: फाइन। आपका गुड नेम प्लीज?
0: निधि।
5: निधि, ओह नाइस। तो टॉपिक अच्छा है।
0: थैंक यू जी।
5: आजकल सोचना है यंगस्टर्स, यूथ के लिए।
0: जी,
5: यूथ एक्सेलेंस, यूथ डेयर
0: जी।
5: तो मैं क्या सोच रही हूँ, बहुत कुछ भी बोल सकते लेकिन अपन बोलने में रहता है
0: जी।
5: वो लोग कितना समझते वो भी सोचना पड़ेगा, बार बार बोले तो लोग नहीं सुनते ना। देट बोथ। तो टुडे वन स्पेशल डे इज वर्ल्ड आर्गन डोनेशन डे।
0: यस मैम।
5: एब्सोल्युटली करेक्ट ना?
0: यस मैम।
5: यू वांट टू एंकरेज देम, अवेयरनेस देना है यंगस्टर्स को
0: जी।
5: जो बोले तो अपन डॉक्टर नहीं है तो भी ऑर्गन डोनेशन करे तो दूसरों को लाइफ दे सकते हैं
0: जी।
5: इट इज इम्पोर्टेंट थिंग
0: जी, बिल्कुल।
5: अवेयरनेस देना है यंगस्टर्स को
0: जी,
5: डोनेशन करना, ऑर्गन डोनेशन करना, ये बहुत अच्छा है। वन थिंग आई एम शेयरिंग सो मेनी टाइम्स इन अवर रेनबो ऑल्सो, my
0: जी
5: mother, her wish, she want to donate eyes.
0: Okay,
5: and she passed away in 2008. Over time pe my brothers, sisters, sab log family members within half an hour mein soch ke organ eyes donate kare, raat mein wo bhi
0: जी.
5: They immediately came, eyes donate kar diye, they given certificate also. Now my mother seeing in two blind.
0: जी मैम, बहुत अच्छी बात शेयर किया है आपने। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। हेलो
6: हेलो
0: हेलो सर,
6: చెప్పొచ్చు
0: సార్? నమస్కారం సార్, మీ పేరు?
6: నా పేరు రమణయ్యమ్మా. మీ పేరు? మా
0: నిధి సార్. ఇవాళ టాపిక్ విన్నారా సార్? మీరు
6: ఆర్గానిక్సా?
0: కాదు కాదు సార్, ఈ ఇయర్ ఇండిపెండెన్స్ డేకి మన టాపిక్ యువశక్తి. అయితే మీకు ఈ టాపిక్ మీద మీ విచారణ ఏంటి, అలాగే ఇండియాలో వచ్చే ఇయర్స్లో ఏ మేజర్ చేంజ్ మీరు చూడాలనుకుంటున్నారు అనే

0: हम उनको समझना चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी क्या है.
1: बिल्कुल सर.
0: अपने बड़ों का, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर का मान सम्मान रख के, आदाब रख के, अपने फैमिली से शुरू करना चाहिए. की जिम्मेदारी समझना चाहिए, फिर सोसाइटी से लेके समाज तक
1: जी.
0: सारे समाज की जिम्मेदारी समझना चाहिए. अपने उम्र की और जो वक्त है, इस वक्त की कदर करना चाहिए.
1: बिल्कुल सर
0: जी, जो वक्त है ये कीमती वक्त है यूथ का. जो देखिए
1: जी
0: बचपना आता है, यूथ, फिर जवान होते हैं, फिर बुढ़ापा आता है, लेकिन आता जाता वक्त चला जाता है, लेकिन आने वाला वक्त फिर नहीं आता. जो आज चले
1: जी.
0: गया वो बीत गया. तो इस वक्त की कदर करना चाहिए यूथ
1: बिल्कुल
0: ने, और अपने उम्र की, अपने लाइफ की, जो यूथ वाली जो उम्र है उनको, इसमें उनको क्या करना है
1: जी.
0: क्या नहीं करना है, ये सोच समझ के. जो समझाते हैं उनको तो समझना, लेकिन उनको खुद को समझना चाहिए. खुद दूसरों पे ज्यादा डिपेंड ना रहते हुए अपने यूथ होने का सही इस्तेमाल करना चाहिए.
1: बिल्कुल सर. थैंक यू सो मच सर.
0: थैंक यू जी.
1: सो दैट वॉज देयर ओपिनियन अबाउट यूथ एंड जो चेंजेस देखना चाहते हैं इंडिया में एंड ऑल. आप भी अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं इस साल के हमारे थीम यू शक्ति पे, कि हम युवता मिलके कैसे इंडिया के फाउंडेशन बनते हैं. इस पर आपके ओपिनियन शेयर कर सकते हैं. आपके फ़ोन नंबर्स है 0402323 00300, 0402323 48 21, 0402970 4715. सुनते रहिए रेनबो FM 101.9. मैं हूँ आपकी अपनी RJ निधि.

वेलकम बैक डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हो रेनबो एफएम 101.9 और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे निधि। सो आज के यूथ के हाथ में फ्यूचर है, ये बात इसीलिए कहा जाता है क्योंकि फर्स्टली हम बहुत ही अडेप्टेबल होते हैं चेंजेस को, और इसीलिए सही चेंज को चुन के हम आने वाले जनरेशन्स को भी इस चेंज का हिस्सा बना सकते हैं। आर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी बिल्डिंग शोज आर विजन फॉर टुमारो एंड वी आर द लीडर्स फॉर टुमारो। आपका कल्चर को प्रिजर्व करके आगे बढ़ाना भी हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे चीज़ अगर हम आज करेंगे तो ये अपना फ्यूचर बिल्डिंग, खुद का और देश का फ्यूचर बिल्डिंग में हेल्प करेगा। तो ये था हमारा आज का फोन इन टॉपिक। सुनते रहिए रेनबो एफएम 101.9। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे निधि।

करे ब्लो, बाकी करे शाइन, तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो, वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज, तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो right now, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ। लक तेरा लीन, बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

वेलकम बैक डियर लिसनर्स, आपके साथ आज का मेरा वक्त बहुत ही अच्छा रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आपका भी वक्त बहुत अच्छे से गुजरा है। आप सुन रहे हो रेनबो FM 101.9, आपकी अपनी RJ निधि के साथ। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: जिस तरीके से ये शुरुआत होती है एक आर्मी ऑफिसर बनने की तरफ, जो एक एक यंग कैडेट जाता है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है और क्या महसूस करता है वो, क्या जोश, वो जज्बा, वो नेशन और एक देश के लिए एक जज्बा होता है जब जाते हैं?
1: तो शायद सब सबके अपने अपने रीजंस होते हैं आर्मी ज्वाइन करने के, लेकिन एक कांस्टेंट फिक्स्ड रीजन सबका ये होता है कि हर फौजी का अपने देश के प्रति सर्विस करने का, माँ भारती के लिए सेवा करने का एक
0: जी
1: पक्का जज्बा फिक्स रहता है। बाकी सब एक्सक्यूजेज हैं,

0: यानी कि ऑलरेडी आपको जो है ग्राउंड बना हुआ मिल गया था,
1: हाँ जी,
0: बस
1: तो
0: आपने उस पर
1: या तो
0: अपना सफर शुरू किया।
1: यस, जैसे मैंने 6th, 7th, 8th क्लास के दौरान
0: जी
1: तैयारी शुरू करी एनडीए की, तो 12th खत्म होने से पहले मैंने एनडीए क्लियर कर लिया था। तो
0: ओके
1: स्कूल के एकदम बाद फिर मैं एनडीए चला गया। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ,
0: जी
1: तो वहाँ से मेरी क्लास से हम 5 गए थे। तो वो शहर में भी थोड़ा, इट हैज़ दी वर्ल्ड रिकॉर्ड, रोहतक सिटी का रिकॉर्ड है मैक्सिमम ऑफिसर्स
0: अच्छा
1: प्रोड्यूस करने का हरियाणा में।
0: ओके
1: तो बस हमारे यहाँ काफ़ी ट्रेंड होता है आर्मी में जाने का, आर्मी नेवी एयरफोर्स मतलब।
0: जी सर, आपने मेजर मानिक एमजौली हमारे साथ जो सेना मेडल से सम्मानित हैं सर, इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको सेना मेडल से सम्मानित किया गया और दूसरे अवार्ड भी आपको प्रदान किए गए हैं। साथ ही आपको पीएम मोदी का मिशन इनोवेशन नेशनल चैंपियन का भी अवार्ड दिया गया।
1: हाँ जी,
0: उसके अलावा ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी जिसमें आपके पूरे करियर में लगातार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आप हासिल करते रहे अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से। उसके अलावा हम और भी और चीज़ें हैं जो हमें आपके बारे में पता लगी हैं, क्योंकि आप कमीशन हुए थे कोर खरेजमेंट में
1: हाँ जी,
0: 1999 में, फिर उसके बाद आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम किया और आपने 10 साल से, करीब 10 साल आपने वहां पर अपनी सर्विसेज प्रदान की और काउंटर इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर।
1: हाँ जी,
0: तो ये बहुत ही एक ना वैरायटी वाला और बहुत ही अलग अलग तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एक
1: हाँ
0: आर्मी
1: जी,
0: ऑफिसर, फिर उसके बाद आपने जम्मू कश्मीर में काफ़ी लंबा समय दिया है, सर्व किया है आपने, और जिस टाइम पर आप कमीशन हुए उस टाइम पर कारगिल वॉर का मेरे ख्याल से टाइम था।
1: बिल्कुल। हम जब कमीशन हुए 99 जून में, कारगिल वॉर चल रहा था,
0: अच्छा
1: तो जब हमारी कमीशनिंग परेड थी, हम सारे बहुत एक्साइटेड थे कि अब लड़ाई में जाने को
0: हम भी
1: मिलेगा।
0: जाएंगे। अच्छा
1: मुझे याद है कि स्टार न्यूज़ ने एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट को भेजा था हमें इंटरव्यू करने के लिए,
0: ओके
1: और जो जो लड़के इन्फेंट्री में गए थे, जो वहाँ पे लड़ाई के लिए जा रहे थे, यूनिट्स थी, तो उनका उन्होंने हमारा अलग से इंटरव्यू लिया था कि आप
0: अच्छा
1: लोग लड़ाई में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है। तो हम सारों का एक ही जवाब था, बहुत एक्साइटेड है, जल्दी भेजिए, राइट। लेकिन
0: जी
1: लेकिन लेकिन जब तक हम कमीशन हुए, एक्चुअली सीज फायर अनाउंस हो गया।
0: अच्छा
1: तो ये हम अपना, ठीक है, देश के लिए युद्ध ना होना एक तरह का अच्छी, लेकिन पर्सनली आपस में ये है कि हम अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि मैं उस लड़ाई में लड़ने का मौका नहीं मिला।
0: हाँ, मतलब एक फौजी
1: बिल्कुल,
0: है और
1: हाँ जी,
0: वो चाहता है कि मैं किसी तरह से मैं लड़ाई का
1: बिल्कुल।
0: हिस्सा बनूं।
1: इससे बड़ा टेस्ट क्या
0: जी
1: है हमारे लिए कि लड़ाई में लड़ने का मौका मिले।
0: बिल्कुल
1: तो वो यूँ लगा लीजिए 2-3 हफ्ते से हम मिस कर गए थे चीज़ें।
0: अच्छा। और सर ये भी है कि उस कारगिल वॉर में जो लोग, जो फौजी शामिल थे उस वॉर का हिस्सा थे, जिसमें से काफ़ी सारे जो फौजी थे उनको शहादत भी हुई, तो वो आपके इमीडिएट सीनियर भी थे, मतलब आपसे उनकी अच्छी खासी, जब आप ट्रेनिंग में थे तब उनसे
1: हाँ
0: मिलते
1: जी,
0: थे,
1: हाँ जी,
0: बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, बहुतों बहुतों को हम बहुत अच्छे से जानते थे। हमारा वो हमारे से 1 या 2 कोर सीनियर्स थे, काफ़ियों को हम एनडीए में मिले थे, कुछ को आईएमए में जानते थे। जो फेमस कैप्टन विजयन थापर थे,
0: जी
1: वो मेरे साथ वाले कमरे में रहते थे, और मुझे याद है मैंने उनसे, जब वो पास आउट होके जा रहे थे, वो 6 महीने पहले पास आउट हुए थे, तो
0: अच्छा
1: मैंने उनसे, उन्होंने मेरी कैसेट ले रखी थी माइकल जैक्सन की, तो मैंने कहा
0: अच्छा
1: सर कैसेट तो वापस कर जाओ। कहते हैं अरे यार, जब नेक्स्ट मिलेंगे तब दे देंगे। मतलब
0: ओके
1: आज भी वो बात याद है। उसके बाद फिर तो
0: बिल्कुल
1: हमें यही पता लगा कि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया।
0: जी
1: सुमित रॉय, विक्रम बत्रा, ये सारे
0: विक्रम
1: हमारे
0: बत्रा।
1: सीनियर्स थे,
0: अच्छा
1: और मतलब देश इनके बारे जितनी बात करे उतनी कम है। इतनी यंग एज पर, आप किसी भी वॉर में देखिए, इंडियन आर्मी के यंग ऑफिसर्स की जो रेशो ऑफ सेक्रीफाइस है, वो किसी भी देश से ऊपर मानी जाती है। क्योंकि जब हम लोग पहुंचते हैं,
0: जी
1: तो सारे टैक्टिक्स एक तरफ, हम कहते हैं हम ही चार्ज करेंगे, आप हम अपने जवानों को सभी यही बोलते हैं, मेरा पीछा मेरा। तो इसीलिए ये एक प्रिंसिपली हमारी आर्मी बहुत, ना केवल एथिकली बहुत
0: एथिकली और साथ ही
1: इज वेरी
0: साथ
1: वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्लेस्ड, लेकिन उसका ये भी कारण है कि जितने यंग ऑफिसर्स जाते हैं, उनमें से
0: जी
1: कोई ऐसा नहीं होता तुम आगे चलो, हम तुम्हारे, हम
0: हम
1: कहते हैं
0: आगे
1: हम
0: चलेंगे।
1: आगे चलेंगे, तुम हमारे पीछे
0: क्या
1: चलो।
0: बात है, ये जज्बा तो सर काबिले तारीफ है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां और यादगार किस्से हैं जो हम मेजर मानिक के साथ डिस्कस करेंगे आज के संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही एक चीज़ और आपको मैं बता दूंगा कि जिसमें हम आगे बात करेंगे कि मेजर मानिक ऑथर भी हैं और इन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो हमारे साथ है मेजर मानिक एम जॉली, इंडियन आर्मी से सेना मेडल से सम्मानित। आज के रहेगी बात जारी संदेश टू सोल्जर्स में।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और मेरे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान मेजर मानिक एम जॉली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस फील्ड कमांडर।

0: under corporate military intelligence, corporate innovator, mass communication strategist, Netram Defense Review के founder हैं और साथ ही celebrated author हैं, TV panelist हैं, leadership coach हैं और counter terrorist operations में कश्मीर में इन्होंने troops को भी command किया है. हम एक बार फिर स्वागत करेंगे Major Manik Jolly का. सर बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर संदेश टू सोल्जर्स में.
1: थैंक यू शाहिद. थैंक यू
0: सर. मैं आपके बारे में जब बात करना शुरू करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन उसके बारे में हम साथ साथ बात करते रहेंगे. पहले सर मैं आपके वो जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनके बारे में जानना चाहूंगा. आपको पहला सेवा मेडल से सम्मानित किया गया जो गैलेंट्री अवार्ड कहा जाता है आर्मी का, तो वो किस तरह से और किस उपलक्ष्य में आपको दिया गया?
1: ये मेरी नौकरी का पहला दूसरा साल ही था. मैं यंग कैप्टन था और कुपवाड़ा में हम लोग तैनात थे. मेरी गोरखा रेजिमेंट यूनिट का हिस्सा था मैं
0: जी.
1: तो मेरी जो यूनिट है फर्स्ट बटालियन फोर्थ गोरखा राइफल्स, तकरीबन 200 साल पुरानी हो जाएगी थोड़े दिन में.
0: ओके.
1: वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स. तो बहादुरी और ड्यूटी हमारे रग रग में तैयार किया जाता है. तो उसमें हमारी यूनिट ने इतना अच्छा परफॉर्म करा था, हमने 1.5 साल में तकरीबन 100 टेररिस्ट मारे थे.
0: ओके.
1: तो यूनिट को भी साइटेशन मिला था. तो हमने बहुत ऑपरेशंस करे, उनमें से एक ऑपरेशन में मुझे अवार्ड मिला था जिसमें टेररिस्ट ने हम पर हमला किया था जंगल.
0: अच्छा.
1: में और उन्होंने हमारे भी एक सैनिक शहीद हो गया था. फिर उन टेररिस्ट को मार के अपने शहीद सैनिक की बॉडी वापस लाने के लिए मुझे सेना मेडल दिया गया था.
0: तो ये पूरा एक मिशन रहा होगा जिस तरीके से आपने बताया कि ये पूरा एक ऑपरेशन रहा होगा.
1: हाँ
0: तो
1: जी.
0: सर वो तो बड़ा टफ और बड़ा ही खतरनाक रहा होगा, कुछ बताइए उसके बारे में.
1: देखिए जो ये ऑपरेशन है आज इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, मैं और यही बात आपके लिसनर्स को बताना चाहता हूँ
0: जी
1: कि हम सब अपने घर में बैठे हैं, FM सुन रहे हैं, बारिश का मौसम है, चाय पकौड़े खा रहे हैं
0: जी.
1: पर यही टफ और डेंजरस मिशन इस टाइम लाखों सैनिक कश्मीर के जंगलों में और नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में कर रहे हैं,
0: अभी भी कर रहे हैं अपनी
1: इस दिस वेरी मोमेंट एज वी आर स्पीकिंग. डेली करते हैं 365 दिन. तो एक सोल्जर की लाइफ किस सेकंड आपको जंगल में कहाँ टेररिस्ट मिल जाए कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. कभी कभी आप महीनों सालों भटकते रहते हैं, आपका एनकाउंटर नहीं होता. कभी आपके एक महीने में 4 एनकाउंटर हो जाते हैं. तो इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी जीरो बट पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई. सो व्हाट हैपेंस, आप जाते हैं, आपको एनकाउंटर हो गया, इसमें बड़ा चांस है आपने पहले उनको देख लिया, उन्होंने आपको पहले
0: अच्छा.
1: देख लिया. वो फायर करके भागना चाहेगा, वो रुक के लड़ना चाहेगा. बहुत इतने ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं, वो ऊपर है, आप नीचे हैं, आप नीचे हैं. तो इतने फैक्टर्स डिसाइड करते हैं उस इन दैट वेरी मोमेंट कि व्हाट विल बी द आउटकम, कि इस लड़ाई से कौन कैसे निकलेगा.
0: तो सर जब मिशन पर निकलते हैं सोल्जर्स हमारे निकलते होंगे तो वो ये पता होता होगा कि या तो मतलब जीत कर वापस आएंगे मार करके या फिर
1: या शहीद हो
0: शहीदोगे.
1: यही है, ये फौज का प्रिंसिपल है हमारे यहाँ. देर इज नो रनर्स अप, यू नो. ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है इंडियन आर्मी में. हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, विक्ट्री और सेक्रीफाइस. या सो आप अगर आपको कहा गया है, और कारगिल वॉर अगेन फिर से जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जो यंग ऑफिसर्स इतने सेक्रीफाइस हुए क्योंकि ट्रेनिंग डे पहले दिन, हम 16 साल के होते हैं जब NDA ज्वाइन करते हैं.
0: अच्छा.
1: उस दिन से लेकर जब तक 4 साल ट्रेनिंग है, कमीशन होते, एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि अपने देश के लिए, अपनी फौज के लिए, अपनी यूनिट के लिए, आपके ट्रेंच में जो साथी है उस बड़ी के लिए लड़ाई लड़नी है,
0: उस बड़ी के लिए.
1: या तो आप उसके लिए लड़ते हो, वो आपके लड़ता है, ऐसी टीम बनती है.
0: क्या बात है सर, मतलब वो आपके लिए जान कुर्बान के लिए तैयार है और आप उसके लिए, एक दूसरे के लिए.
1: यही एक कॉन्फिडेंस है जो आर्मी लीडर्स को कॉर्पोरेट लीडर्स इतना फर्क बनाता है, क्योंकि एक एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है
0: जी.
1: उस जवान को पता है मेरा जो ऑफिसर है कभी ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि मेरी जान खतरे में आए.
0: क्या बात है सर,
1: अगर खतरा होगा तो खुद पहले जाएगा. और एक ऑफिसर को मालूम है कि जब तक मैं हूं ये मेरे जवान मेरे से आगे लड़ने को तैयार है. तो जब ये इस तरह की
0: ये जो जज्बा है,
1: हाँ जी जज्बा रहता है, तो सब एक से बढ़कर
0: एक दूसरे के लिए, अपने साथी के लिए, बड़ी के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं.
1: और कॉन्फिडेंस रहता है कि
0: कॉन्फिडेंस रहता है,
1: अपने सुपीरियर के ऑर्डर में पूरा फेथ है कि ये कभी ऐसा नहीं करेगा कि मेरी जान खतरे में. हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम दुश्मन को मारने के लिए लड़ रहे हैं. वो कहते हैं गिविंग लाइफ फॉर योर कंट्री इज एन ऑनर, तो लेट दैट ऑनर बी ऑफ एनिमी.
0: क्या बात है
1: वो,
0: क्या बात.
1: हाँ, तो हमारा काम है जीतना, दुश्मन को मारना. तो एक बहुत ही अलग लेवल की ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी डेवलप करी जाती है आर्मी में. इसी कारण वो ऐसे ऑपरेट करती है. अगर आप उस ढर्रे को कहीं और अप्लाई करना

0: चाहेंगे, जहाँ पे लाइफ एंड डेथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वो ऑपरेट वो नहीं एक सक्सेसफुल होता
1: नहीं हो सकता सर। वही चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग कितनी टफ होती है एक आर्मी ऑफिसर की, लेकिन उस टफ ट्रेनिंग के बावजूद भी वो जो जज्बा है शायद वो उससे भी ज़्यादा भारी है उस पर, उस ट्रेनिंग पर, वो जज्बा कि वो जो अपने नेशन, अपने वतन के लिए, देश के लिए, अपने बड़ी के लिए, अपनी यूनिट के लिए।
0: देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। वही भी हम एनडीए जाए 16-17 साल, इट्स जिसको बोलते हैं इम्प्रेशनेबल एज। 16-17 साल में आप दुनिया को समझना शुरू करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अब जो लोग कॉलेज जाते हैं उनके चारों तरफ, फॉर एग्जाम्पल आज का देखते हैं इंस्टाग्राम पे वायरल रील बनाना,
1: बिल्कुल सर, सोशल
0: स्टूडियो
1: मीडिया
0: मूवी
1: पूरा पूरा
0: हीरो।
1: एकदम।
0: हमारे आसपास क्या होता था, हम जहाँ ट्रेनिंग करते थे वहां लिखा था एक गोली एक दुश्मन, जो हमारे कमरों किल डेथ बिफोर इट किल्स यू, आई विल डाई फॉर माई कंट्री। चारों तरफ आप
1: वो
0: ऐसे,
1: मोटिवेटेड
0: हाँ
1: मतलब स्लोगन्स आपको मिल
0: या
1: रहे हैं।
0: आप ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो कि दिन रात आप एक ही चीज सोचते हो कि मैं इस देश के लिए बनाऊं, और अगर कभी जरूरत पड़ेगी
1: तो मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा
0: बिल्कुल विदाउट अ डाउट।
1: विदाउट अ डाउट।
0: ये
1: क्या
0: तो
1: बात है
0: इसमें कोई हेजिटेट नहीं करेगा कभी।
1: सर, बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपसे आगे भी करूंगा। अभी एनडीए के बारे में आपसे पूछूंगा कि
0: हाँ
1: आपने
0: जी
1: उस ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या, जाहिर है वो वक्त बड़ा ही मेरे ख्याल यादगार होता है बडीज के साथ, और इंटरेस्टिंग भी, और कुछ शरारतें भी जरूर होती हैं उस जमाने में,
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो एज ऐसी
1: तो
0: होती है और टाइम ऐसा
1: और
0: होता
1: टाइम
0: है।
1: ऐसा होता है।
0: हाँ
1: तो हम अपने लिसनर्स को यहाँ बताना चाहेंगे कि आप हमें मैसेज करें, मैसेज बहुत सारे आ चुके हैं सर, मैं आपको बता दूं और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज करके हमारे आज के गेस्ट मेजर मानिक एम जॉली से सवाल कर सकते हैं। नंबर है 9868107070। सर मैं सोचता हूं कि आगे बढ़ूं तो कुछ मैसेजेस तो मैं अभी ले लूं। ये असम से सर मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, ये हितेंद्र दास हैं सर, आपको भी और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए हितेंद्र। और उसके बाद मैसेज आया है स्वतंत्रता दिवस का, सब सोल्जर भाइयों का हमारा सल्यूट, हमारा भारत माँ की रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान क्या श्रेष्ठ जीवन का संदेश है। कर्नाटका राज्य विजयपुर डिस्ट्रिक्ट आराकेरी गांव से, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, आरकेडी पंडित चन्नप्पा सरवाड़ का सर ये मैसेज है।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद आपको भी।
1: और सर ये मैसेज है, हाय अमर जय अहिरवार फ्रॉम मध्य प्रदेश क्लास 12 सर, ये स्टूडेंट है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, वॉट थिंग्स शुड आई रिमेंबर ड्यूरिंग प्रिपेरेशन एंड फॉर SSB इंटरव्यू, मेनली SSB गाइडेड फॉर सिविलियन। और अजय अहिरवार सर मध्य प्रदेश है सर, इनको कुछ आप गाइड करना चाहेंगे।
0: तो शायद वैसे तो ट्रेनिंग के लिए मतलब बहुत लंबा होता है ऐसे, पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा
1: जी
0: जो अक्सर लोग गलती करते हैं, वो ट्रेनिंग की प्रिपरेशन करके इंटरव्यू की तैयारी करके कुछ और बन के दिखाना चाहते
1: अच्छा
0: हैं, और वो पक्का रेसिपी टू फेलियर है।
1: अच्छा
0: आप इंटरव्यू में जैसे हैं 100% वैसे रहिए, और वो तो फिर इंटरव्यू पर है वो आपको शेयर, दैट इज
1: ठीक
0: उसको कोई
1: ठीक
0: गारंटी नहीं कर सकता। पर अगर आप कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो
1: जी
0: डेफिनेटली थ्रू नहीं होंगे। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को कायम रखें,
1: जी
0: इंटरव्यू की
1: जो आप
0: तैयारी को
1: हैं,
0: जो आप है।
1: क्या बात
0: अगर
1: है।
0: आपको पिक्चर पसंद है आप बोलिए मुझे पिक्चर देखना पसंद है, ये मत
1: अच्छा
0: बोलिए
1: अच्छा
0: मुझे
1: अच्छा
0: बुक्स पढ़ना पसंद है, क्योंकि टेबल के उधर जो बैठे उसने बहुत
1: जी
0: बुक्स पढ़ी है, वो पकड़ लेगा आपको।
1: तो आपको जो आप हैं वही दिखाएं
0: बिल्कुल
1: वहां पर
0: बिल्कुल
1: सर। एक और मैसेज है, जय हिंद सर जी, जय हिंद मेजर साहब, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से मैसेज कर रहे हैं सर ये। और सर ये हैं
0: आपको
1: संदेश
0: भी जय हिंद।
1: जी, शो बहुत खूबसूरत शुरू है जी, दिल को छू लेने वाली बेहद खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं। शाहिद जी नमस्ते, मानिक सर नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। यश शिंदे हैं सर ये मुंबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, जय हिंद। और सर ये एक और मैसेज आ गया है, जय हिंद मेजर साहब, कारगिल वॉल तो हमने नहीं देखा है, मूवी में देखा, लेकिन आपके जरिए हम सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। एडवांस 80th हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, वंदे मातरम। रोहित मेहर हैं सर ये बुदापाली विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सबको जय हिंद।
1: और सर सभी लोग इस वक्त जो है देशभक्ति के जो ना उसमें सराबोर हैं, जुनून में, जोश में, क्योंकि 15 अगस्त बस अब परसों नजदीक ही है, और ये स्वतंत्रता दिवस जो हमें याद दिलाता है कि जो कुर्बानियां दी गई इस देश की आजादी के लिए, उन सबको हम याद करते हैं। तो यहां पर हम आगे बढ़ेंगे सर, हम बात करेंगे अब एनडीए की। आपने एनडीए में जब आप आए तो क्या माहौल था वहां पर, नया नया एक्सपीरियंस कैसा लगा एक 16 साल के जब मानिक वहां पर आ रहे थे तो।
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत देखिए, एक तो आप घर से पहली बार बाहर गए होते हैं, और घर से पहली बार बाहर जाके आप किसी रिजॉर्ट में रह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आप
1: अच्छा
0: बिल्कुल एक वन ऑफ द टफेस्ट मिलिट्री एकेडमी में चले गए,
1: जी
0: जहाँ पे डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट। आपका
1: बिल्कुल
0: आपसे 6 महीने सीनियर वो आपके लिए भगवान की तरह है, वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: फिजिकली इट्स वेरी स्ट्रेनिंग। वैसे तो मैं स्पोर्ट्स में था, लेकिन
1: अच्छा
0: एनडीए का अलग

0: लेवल होता है, तो शुरू में आपको यू नो रूटीन इज वेरी टाइट, फिजिकली इतना डिमांडिंग है,
1: जी
0: तो एक बार तो हर कोई हिल जाता है ना,
1: बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे कहा स्पोर्ट्स में तो आप थे, लेकिन वो
0: या
1: स्पोर्ट्स अलग है जो हम स्कूल में करते हैं या
0: बिल्कुल.
1: आपने, लेकिन जो आप एकेडमी में कर रहे हैं।
0: बट हमारे स्कूल में बाई चांस स्पोर्ट्स की अच्छी लेगेसी थी, तो मेरे को फिजिकली तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई परफॉर्म करने
1: जी
0: में. बट ये है कि शुरू में जाके, क्योंकि हम यू नो अपने घर पे रहे थे, कई बच्चे सैनिक स्कूल से आते हैं, उनको थोड़ी
1: जी
0: आदत होती है.
1: ओके
0: हम पहली बार घर से आए थे, मुझे याद है कि पहले एक दो हफ्ते में घर की बहुत याद आती है, क्योंकि
1: जी
0: चारों तरफ हर कोई आपको खाने को दौड़ता है एनडीए में, और घर पे तो जो भी है आपको
1: बिल्कुल
0: सारी
1: जाहिर है
0: सहूलियत
1: प्यार
0: है,
1: से,
0: प्यार है.
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मैं एक बार काफ़ी दुखी बैठा था अपने रूम में, तो मेरे एक सीनियर आए, वो सीनियर मोस्ट थे, सिक्स टर्म में थे वो. तो क्या हुआ? मैं कहा सर घर की बहुत याद आ रही है. तो कहते चिट्ठी लिखो.
1: अच्छा
0: तो मैं आपको बस बता रहा हूँ बस सोच कैसे होती है. मैं कहा सर चिट्ठी तो लिख चुका. कहते इधर आओ. मुझे अपने रूम में लेके गए,
1: जी
0: अपना परफ्यूम निकाला अच्छा सा, मेरे पे स्प्रे करा, कहते बस अब खुश हो जाओ, यही खुशी है. तो अभी
1: जी
0: तुम्हें ऑर्डर है खुश होने का. मैं ठीक है सर. तो और उसके आई थिंक बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वी हैड वाज, हमारे ही टाइम वहाँ पे मेजर साहब पिक्चर की शूटिंग हुई थी.
1: अच्छा, मेजर साहब अमिताभ बच्चन
0: हाँ जी.
1: और अजय देवगन। जी
0: तो उस थोड़े महीनों के लिए एकेडमी का में इतने फनी इंसिडेंट्स हुए थे.
1: अच्छा, तो कई महीने वो शूट चला था।
0: आई थिंक दो तीन महीने तो चला था मेरे ख्याल से. तो
1: अच्छा
0: उसमें क्या हुआ कि एक डेढ़ महीना तो चला था फॉर श्योर.
1: जी
0: अकेडमी ने मना कर दिया कि हम अपने कैडेट शूटिंग के लिए नहीं देंगे.
1: ओके
0: तो जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे वो बॉम्बे से यंगस्टर्स को लेके आए, उनको तो 150 चाहिए थे, उन्होंने हमारे जैसी यूनिफॉर्म पहनाई
1: ठीक है
0: और उनसे परेड वरेड कराते थे और उनके शूटिंग वूटिंग के लिए यूज करते थे.
1: ठीक है।
0: लेकिन अब अकेडमी में ऐसा हो गया, जब भी आपको कोई सीनियर पकड़े इधर आओ, जूनियर यू कर, हम तो मुंबई से आया है तो शूटिंग वाला है. तो काफी क्योस मचा हुआ था उन दिनों.
1: अच्छा
0: थोड़ी देर में सब सॉर्ट आउट हो गया. और फिर एक दो सीन थे, जैसे क्रॉस कंट्री का सीन है जिसमें एक पहाड़ी के ऊपर वो दिखाते हैं अजय देवगन फर्स्ट आया,
1: अच्छा
0: तो उसमें उन्होंने हमारे कैडेट्स वगैरह को बुलाया था कि पीछे आप लोग भागना, लास्ट में ये आगे आके फर्स्ट आ जाएंगे.
1: ओके हीरो, मतलब हीरो बन
0: हाँ,
1: जाएंगे। ठीक है
0: हमारे कैडेट थोड़ा दिल पे ले गए कि हमारे रहते कैसे फर्स्ट आ
1: अच्छा
0: जाएगा. वो आई थिंक 10-15 बार शूट करना पड़ा, हर बार हम आगे आ जाते थे कोई ना कोई. तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत, इट वॉज वेरी फनी. तो
1: अच्छा
0: हम लोग आई मीन काफी क्लोजली शूट, मैं भी एक दो किसी शूट में हूँ भीड़ में कहीं पे दिख रहा हूँ इधर उधर.
1: अच्छा हम सर मैं मूवी देखूंगा आपको देखने के
0: हाँ जी
1: लिए
0: प्लीज. तो काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी, और
1: जी
0: उसका गाने भी, एक्चुअली इस मूवी के गाने भी बहुत अच्छे थे सभी.
1: हाँ, गाने सर बड़े सुंदर गाने थे और सिंदूर सुंदर हीरोइन भी थी इसके अंदर,
0: या
1: सोनाली बेंद्रे।
0: बिल्कुल
1: तो सर
0: बिल्कुल.
1: वहां पर गाने भी शूट हुए होंगे उसी एकेडमी में।
0: गाने शूटिंग हमने कभी देखे नहीं. आई
1: अच्छा
0: थिंक हमारे कुछ सीन्स वगैरह मेस के, पीटी ग्राउंड, क्रॉस कंट्री,
1: ये
0: मिलिट्री
1: हुए।
0: हॉस्टल, ये सब होते थे. लेकिन और सोनाली बेंद्रे तो पूरी एकेडमी की फेवरेट थी.
1: अच्छा
0: मतलब आप आई डोंट नो लेट 90s में,
1: जी जी
0: एंड
1: जी
0: स्टिल टुडे शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस
1: यस
0: में,
1: ऑफ कोर्स
0: और वो एक्टिंग एज अ पर्सन शी सो नाइस. जिनसे मिली भी सब इतनी तारीफ करते थे कितने अच्छे से बात करती हैं. तो पूरी एकेडमी बस सारी
1: दीवानी थी
0: दीवानी थी कि कहीं जहां बहुत ही देखने भाग जाते थे.
1: तो मैंने तो सर आपसे बात करते करते ना वो एक सॉन्ग भी निकाल लिया है, तो उसके बारे में बताइए सर कुछ, कोई किस्सा किसी शूट के दौरान आपके सामने आया हो, आपकी टीम के सामने आया हो।
0: हमें बस एक बार एक मिलिट्री हॉस्पिटल का वहाँ पे सीन है
1: अच्छा
0: मूवी में, तो जैसे ही होता था तो सारी एकेडमी में बात हो जाती सोनाली बेंद्रे मिलिट्री हॉस्पिटल में आई है.
1: अच्छा
0: तो 1 घंटे में कई, मेरी टांग दर्द हो रही है, मेरी हाथ दर्द हो रहा है, वहाँ पे पहुँच गए बहुत सारे रिपोर्ट करने, सबको वापस भगा दिया था. तो
1: अच्छा
0: सब चलता रहता था वहाँ पे.
1: जी,
0: हाँ
1: तो
0: जी.
1: अजय देवगन की कभी कोई शूट आपके आसपास आपके सामने कभी हुआ, क्योंकि एकेडमी में ही शूट चल रहा था।
0: हाँ जी. वो ड्रिल ड्रिल में पीटी में कई बार आते थे. बट आई मीन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट जो लेवल ऑफ फिटनेस, जो लेवल एनडीए कैडेट्स का होता है वो
1: बिल्कुल
0: फिल्मी हीरोज का नहीं होता. तो अक्सर मतलब थोड़ा सबड्यू करके, थोड़ा खर्च के उनसे करवाया जाता था ताकि
1: अच्छा,
0: फिल्मी इफेक्ट पूरा दिख जाए.
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: रीटेक्स के साथ
0: हाँ
1: वो
0: जी.
1: सब ठीक से हो
0: पर मैं
1: जाए।
0: आपको ये बता रहा हूँ, हमें बहुत अच्छा महसूस होता था. मतलब एक तरह का कॉन्फिडेंस होता था
1: कॉन्फिडेंस
0: कि बॉलीवुड वो बनने की कोशिश कर रहा है जो हम हैं.
1: जो आप हैं,
0: जो एक कॉन्फिडेंस आता
1: बिल्कुल
0: है कि ये मतलब वो एक्टर्स हैं, ऑब्वियसली वो फौजी नहीं है, वो अंडर
1: बिल्कुल
0: ट्रेनिंग नहीं है, पर हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता था देख के कि हमने जो अचीव किया है, जो हमारी पर्सनालिटीज हैं, जो हमारा फिटनेस है,
1: फिटनेस है।
0: वो लोग एज एन एक्टर बनने की कोशिश करते हैं टू मेक अ गुड मूवी. सो वो कॉन्फिडेंस आपके साथ सारी लाइफ रहता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल

0: मेजर साहब, मैंने यहाँ पर ये उस फिल्म का जो आपके साथ यादों में जुड़ी हुई है,
1: बिल्कुल
0: मेजर साहब, उसका ये खूबसूरत ट्रैक निकाल लिया है और आपकी पसंद का भी है। मेजर मानिक एम जौली हमारे साथ हैं, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन। आप बने रहे हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में और मैसेज करते रहे।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, शाहिद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जोली, इंडियन आर्मी वेटरन हैं, सेना मेडल से सम्मानित हैं और गोरखा राइफल और मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहे हैं, फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट इनोवेटर और मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं, फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के और सेलिब्रेटेड ऑथर भी हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बार बार अगर बताना भी चाहूँ तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो मेजर साहब, हम बात कर रहे थे सर आपके एनडीए के दौर की, वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्से आपने जो सुनाया और हमने गाना भी वो सुना, सोनाली बेंद्रे पर और अजय देवगन पर जो पिक्चराइज किया गया, आपने उनको देखा कि वो शूट के दौरान क्या क्या वहाँ पर इंसिडेंट्स हुआ करते थे। तो मैं आगे बढ़ूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पहले क्यों ना मैसेजेस ले लेता हूँ क्योंकि हमारे लिसनर इंपॉर्टेंट हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे, हम उनके मैसेज पढ़ के सुनाएं। सर मनीष इदरीसी का मैसेज है रामपुर बिलासपुर से, नमस्कार सर जी, नमस्कार मेजर साहब,
1: नमस्कार, जय हिंद।
0: ये मैसेज है, जय हिंद टू सर, आई एम अजय अहिवार फ्रॉम मध्य प्रदेश, फिर से आया इनका मैसेज और क्लास 12 प्रिपेयर्ड कर रहे हैं ये, फिर से मैसेज आया और हमने आपको बताई दिया है, सर ने बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं और कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब ये मैसेज आया सर, संदेश टू सोल्जर्स, मेजर साहब जय हिंद, शो रोचक, ज्ञानवर्धक, लाभप्रद और सकारात्मक संदेश देने वाला है, मेजर साहब इस शो से लोग इंस्पायर्ड होंगे, देशभक्ति का जज्बा कायम रहेगा, ये कह रहे हैं।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि हर दिल में देश प्रेम की आग सुलगती रहनी चाहिए और ये एक आगे कुछ पंक्तियां लिखते हैं सर, अर्ज है चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो ये हैं सर एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से, जिन्होंने ये मैसेज किया है। और इसके अलावा मैसेज है विलेज बरकतपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, स्टेट यूपी, नेम चरुण कुमार, आप सभी आर्मी ऑफिसर्स को मेरा जय हिंद सर।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और ये है सर, नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, प्रोग्राम हमें अच्छा लग रहा है जी, खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं, करता हूं उन्हें सलाम ए वतन, सलाम ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।
1: भारत माता की जय, जय हिंद। बहुत अच्छा मैसेज साहब
0: जी। सर मैसेज और भी हैं, मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ के सुनाई दूं फिर आगे हम बातचीत करेंगे, बहुत सारे मैसेज सर, ये बहुत लंबा एक मैसेज है, गुड आफ्टरनून टू यू बोथ सर, संदेश टू सोल्जर्स, नाइस प्रोग्राम, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स सोल्जर्स एंड ऑल्सो योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स, थैंक यू शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक एक्सपीरियंस स्पेशली रिगार्डिंग कारगिल वॉर, रिगार्डिंग योर अचीवमेंट एंड मेडल्स विच आर डिजर्विंग ऑन द 15th ऑफ आवर कंट्री इंडिया सेलिब्रेटिंग 80th इंडिपेंडेंस डे, ऑन दिस ओकेशन आई विश ऑल इंडियंस हैप्पी 80th इंडिपेंडेंस डे, भारत माता की जय, अपना भारत महान है, वंदे मातरम, जय हिंद, फ्रॉम एम आर मधुसूदन, ये एम बी राजेश्वर, सन ऑफ एम बी राजेश्वर, दत्तर कॉलोनी नियर शिवालयम टेम्पल, सीता फल मंडी, सिकंदराबाद, तेलंगाना से सर ये मैसेज आया है।
1: थैंक यू,
0: काफी खूबसूरत और बड़ा लंबा मैसेज था ये। और ये है, जहिंद सर आपको और हमारे देश को समस्त जवान स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, आप हैं तो हम सुरक्षित हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं शबनम, बी के दत्त कॉलोनी, नई दिल्ली से।
1: धन्यवाद, आपको भी जय हिंद। और मैं बोलना चाहूंगा
0: जी जी जी
1: कि ये सारे अच्छे मैसेजेस सुन के, चाहे मैं अभी रिटायर्ड हूँ या सर्विंग हो,
0: जी,
1: किसी भी फौजी को बहुत अच्छा लगता है, जिसको बोलते हैं ना कि आपको पता है भाई हमारे देश में इतना प्रेम और रिस्पेक्ट है फौजियों के लिए।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल,
1: आप अपनी ड्यूटी करते हुए घबराते नहीं, आपको पता है पीछे मेरा देश है,
0: पीछे मेरा देश है, देशवासी हैं सर, और देशवासी सर आपको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, और सर हम आपके ऋणी हैं क्योंकि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारे देश के भीतर भी, देश की सीमाओं पर भी, देशवासियों की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका जो डेडिकेशन है देश और देशवासियों के लिए, तो वो सैल्यूट है सर हमारे सोल्जर्स को, इसीलिए हमारा प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर्स। सर मैसेजेस में लगातार अभी मैं सोचता हूँ रोक दूं, अभी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मैं आपसे सर आगे बातचीत बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सर आपसे हम जानने के फिर आप जब गोरखा रेजिमेंट में आप हुए कमीशन 1999 में, तो वो फिर जो सफर शुरू हुआ, अब आप बताएं फिर जिस तरह से आपका फिर आगे आप जाते हैं।
1: मैं तो फिर कमीशन कुपवाड़ा में था, कश्मीर में फॉरवर्ड एरिया है, वहाँ पे हमारा रोल या तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कारगिल के एकदम बाद था।
0: अच्छा,
1: तो सीज फायर तो नहीं था, तो दिन रात गोलाबारी होती रहती थी।
0: अच्छा,
1: तो हम भी उन पर करते हैं, वो भी हम पर करते रहते हैं उस टाइम।

0: ये क्रॉस बॉर्डर रेड बहुत होती है, उन्होंने काफी
1: ओके
0: सोल्जर्स हमारे उसमें भी शहीद हुए, लेकिन जो था मतलब वो एक सोल्जर के लिए, एज अ सोल्जर
1: जी
0: एक एक्सपीरियंस था कि आप किसके लिए सोल्जर बने। अगर आपने लड़ाई नहीं देखी, अगर आपने गोलाबारी नहीं देखी, अगर आपने वो, तो इस हिसाब से फिर हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में चले गए,
1: जी
0: जहाँ पे हमने, मेरी यूनिट ने बहुत अच्छा करा, क्योंकि वो बहुत एक्टिव एरिया था,
1: अच्छा, मतलब
0: हम
1: सेंसिटिव एरिया था और
0: सेंसिटिव एरिया
1: हमेशा
0: था।
1: कुछ ना कुछ हैपनिंग।
0: तो कुपवाड़ा बॉर्डर जो है, वहाँ से बहुत सारे लॉन्च पैड हैं जहाँ से पाकिस्तान टेररिस्ट अंदर भेजता रहता है,
1: ओके
0: तो इस कारण वो बहुत एक्टिव एरिया माना जाता है वहाँ पे।
1: और वहां पर आपकी पोस्टिंग थी।
0: हाँ जी, तो आम आदमी एक्चुअली अक्सर जब भी आप बात करते हो, जंगल में टेररिस्ट ढूंढ रहे थे, पहाड़ में ढूंढ रहे थे,
1: जी
0: उसका स्केल समझ नहीं पाता कि किस
1: जाहिर है,
0: स्केल पे हम बात कर रहे हैं, कि वो जंगल कितना बड़ा था।
1: अगर मैं इमेजिन भी करूं तब भी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच
0: या
1: सकता।
0: यूं लगा लीजिए एक पूरा शहर जंगल है,
1: अच्छा
0: जिस शहर में आप लोग, आपके लिसनर रह रहे हैं,
1: जी
0: वो पूरा शहर जंगल है, और आप 100 लोग हैं, आप
1: अच्छा
0: कितना ढूंढेंगे? और उसमें पहाड़ियां भी हैं, क्लिफ भी हैं, बर्फ भी पड़ी हुई है 20-20 फुट,
1: 20-20 फुट।
0: 20 फुट तो एवरेज आफ्टर स्नोफॉल होती है,
1: अच्छा
0: राइट? और आप 9,000 फीट से आपका बेस शुरू होता है, 15-17 हज़ार फीट तक जा रहा है, आपको सारा पेट्रोल करना है। तो अक्सर आपने देखा होगा फौजी से आप सब लोग पूछते हैं कैसा था ये था, वो कहते हैं हाँ ठीक था, अच्छा था।
1: तो यानी कि वो जो
0: ओनली
1: ठीक था
0: रीजन
1: कह रहे
0: इज,
1: हैं वो।
0: ओनली रीजन इज, समझा पाना पॉसिबल नहीं है कि वो किस तरह का एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है।
1: सर मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा, वो आप बताइए प्लीज।
0: तो सी, जो माउंटेन्स हैं वहां पे, क्लिफ्स हैं
1: जी
0: और बर्फ पड़ी हुई है, एक पीछे की तरफ पूरा जंगल है, चलने की जगह नहीं है, स्नो स्टॉर्म आ जाता है, ब्लिजर्ड आ जाएगा,
1: अच्छा
0: उसके बाद ऊपर से टेररिस्ट है
1: जाहिर है
0: जो
1: जो
0: वेट कर
1: सबसे
0: रहा है,
1: बड़ा
0: जो, हाँ, जो वेट कर रहा है कि आप
1: वो
0: उसको
1: वेट कर
0: पहले
1: रहा
0: दिख
1: है।
0: जाए।
1: जी
0: खाना आपको हफ्ते में एक बार हेलीकॉप्टर से आता है,
1: एक बार
0: हाँ, जो भी फ्रेश राशन, वो आपको हफ्ते में एक बार मिल जाएगा, राइट? आपको अगर गर्म गर्म गर्म रहना है, ये 20-25 साल पुरानी बात है, तो उसमें केरोसिन का स्टोव यूज़ करना पड़ रहा
1: ओके
0: है, मॉडर्न इक्विपमेंट उस टाइम नहीं थे।
1: जी
0: डेली आप, क्योंकि अनदर थिंग इज, ये कारगिल के एकदम बाद की बात है,
1: हाँ
0: तो इंडियन आर्मी ने, भारत सरकार ने डिसाइड करा कि कारगिल इसलिए हुआ था कि कुछ पहाड़ी हमने विंटर वैकेट करी थी, तो पाकिस्तानी आकर बैठ गए थे,
1: ओके
0: तो अब हम कुछ भी विंटर वैकेट नहीं
1: नहीं
0: करेंगे।
1: करेंगे, हम वहां पर भी अपनी ड्यूटी रखेंगे।
0: तो नेचुरली प्रेशर इज ऑन आर्मी। अब वो पहाड़ियां जहां पर हम आज तक गए भी नहीं थे, उनके
1: ओके
0: ऊपर छोटे छोटे टुप्पे, फिल, रॉक, वहां पे जाके नई पोस्ट एस्टेब्लिश करना, रिसोर्सेज नहीं, क्योंकि आप अगर फौजी को ये भी बोल देंगे ना, चप्पल में जाओ फौज, बर्फ में जाके पोस्ट
1: जी
0: बना लो, वो चला जाएगा।
1: अच्छा
0: हमें आदत में नहीं होता है बोलना कि ये कंप्लेंट करे कि ये नहीं है, वो नहीं
1: एक्सक्यूज
0: है,
1: कुछ नहीं।
0: या तो उस हिसाब से काफी डिफिकल्ट, काफी डिफिकल्टी में सर्विस थी। और उस सारे में आपको अंदर आते हुए टेररिस्ट को भी रोकना है, जो अंदर आ गए उनको भी ढूंढना है,
1: अच्छा
0: आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो वहां पे जो गांव है, लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप, वो आपके देशवासी हैं,
1: बेशक
0: आप नहीं
1: उनकी भी
0: चाहते,
1: हिफाजत।
0: हाँ, आपको ये नहीं चाहते वो सोचे फौज हमारे को परेशान कर रही है। तो इट इज अ वेरी हाई स्ट्रेस, वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। और एक ही चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, ये इस तरह के मैसेजेस, कि आपको बस
1: जहां से
0: ये,
1: हमारी बात शुरू हुई
0: हाँ,
1: थी
0: कि मैं आपको यही बस, कि जो मैं कर रहा हूँ इस देश में उसकी वैल्यू है, ये लोग उसको मानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ,
1: जी, उनको
0: और
1: कदर
0: बस
1: है इस बात की और उनको परवाह है कि भाई हमारा जो फौजी
0: ये
1: हमारा
0: तो
1: भाई
0: मानी सी
1: है।
0: बात है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट दुनिया के एक तरफ, सारे लीडर ब्यूरोक्रेसी, और
1: बिल्कुल
0: फौजी
1: फौजी
0: एक तरफ,
1: एक
0: जो
1: तरह
0: प्यार हम फौज को मिलता है वो नहीं, और इसी कारण से
1: जी
0: आप कॉन्फिडेंटली देश सेवा में लगे रहते हैं।
1: बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये तो मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ। हम हर हफ्ते यहाँ पर संदेश टू सोल्जर्स में अपने जो हमारे आर्मी वेटरन्स हैं और जो सर्विस में भी हैं फौजी आते हैं, तो उनसे मिलकर के वो जो देशभक्ति का जज्बा है ना सर, जो है ऑलरेडी, वो कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि वो बातें, वो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइव एक्सपीरियंसेस, जो हम कभी ना महसूस कर सकते, हम कितना भी इमेजिन करने की कोशिश करें, जैसे कि आपने बताया अभी, वो हम कर ही नहीं सकते। और एक फौजी उसको एक्सप्लेन कर पाने में मतलब असमर्थ ही महसूस करेगा कि मैं कैसे बताऊं। तो ये एक अननोन सी एक जो डेडिकेशन हम महसूस करते हैं कि वो हमारे फौजियों की है, तो वो सिर्फ एक दिल से जज्बा ही हम जाहिर कर सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सर इसी दौरान जैसे अब आप जब दूर होते हैं, घर से भी दूर होते हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी लोकेशंस पर, ऐसे हालात में होते हैं जहां पर जैसा आप, तो कितने टफ, तो फिर घर की भी याद आती होगी।
0: बहुत बिल्कुल। और ये, दिस इज, वहां पे मोबाइल भी नहीं था,
1: और उस जमाने में
0: तो
1: तो
0: महीनों महीनों में बात होती थी, मैं 10-15 दिन बाद चिट्ठी आती थी।
1: 10

0: क्योंकि पहाड़ में वो एक खच्चर के ऊपर वो पोर्टल लेके आता था,
1: अच्छा
0: चिट्ठी दूर से दिख जाता था, 2 किलोमीटर दूर से आ रहा है, और सारे एक्साइटेडली बैठे थे कि मेरी भी चिट्ठी
1: मेरी
0: आई
1: भी
0: है,
1: चिट्ठी
0: मेरी।
1: आएगी
0: तो जो आप फिल्मों में छोटा सा दिखाते हैं ना चिट्ठी का क्रेज, वो
1: जी।
0: मजाक नहीं है एक्चुअली।
1: अच्छा
0: आपको महीने में एक बार चिट्ठी आनी है आपकी, और आपको लगता है यार कहीं से परिवार से आपके दोस्तों से
1: दोस्तों
0: कुछ
1: से
0: खबर
1: क्या
0: आए, तो लेटर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी वहां।
1: बात है, मतलब
0: हाँ,
1: लेटर्स की हम आज
0: और
1: ये
0: 15 दिन से आप लिख रहे हो,
1: जी
0: आपको उसी डाक से वापस
1: वापस
0: भेज
1: भी
0: दिया।
1: भेजना है।
0: हाँ,
1: ओके
0: तो लेटर्स की बहुत वैल्यू। तो उस टाइम एक रेडियो कैसेट ये सब होता था,
1: अच्छा,
0: तो आपके पास कुछ कैसेट्स बाय चांस जो आपके साथ ऊपर चली
1: ऊपर
0: गई,
1: चली गई।
0: वो नेचुरली या तो आपकी फेवरेट बन जाती थी क्योंकि
1: हाँ
0: और कुछ
1: सुनते
0: था
1: सुनते,
0: नहीं,
1: क्योंकि और कुछ है ही नहीं।
0: या रेडियो सुनते थे कभी अपना कभी पाकिस्तान का,
1: अच्छा,
0: दोनों कैच करते, तो बस कुछ गाने आपके फेवरेट बन जाते हैं, आप वो सुनते रहते
1: तो
0: हैं।
1: उसमें से कुछ बताइए सर।
0: तो एक उस टाइम मेरा फेवरेट बहुत अभी भी आज भी है, एक रुस्तम सर आपका पुराना गाना, फिर तुम्हारी याद आई ऐ
1: अच्छा
0: सनम, और उस गाने की एक्सटेंडेड वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो सोल्जर्स गाना गा रहे हैं,
1: ओके,
0: ये सेनापति जो है किले पे खड़ा है और नीचे
1: अच्छा
0: उसके जवान गाना गा रहे हैं, और अपने
1: परिवार को
0: परिवार को याद करते हुए, गर्लफ्रेंड को बीवी को याद करते हुए
1: क्या
0: गा रहे हैं।
1: बात है।
0: तो द होल सेटिंग ऑफ द सॉन्ग इस तरह से है कि वो सिर्फ लव सॉन्ग नहीं है, इट इज
1: जी
0: लॉन्गिंग ऑफ सोल्जर्स, जो सोल्जर्स हैं
1: जी
0: वो उसको याद कर रहे हैं
1: उसको
0: जिसको
1: याद
0: मिस
1: कर
0: कर
1: रहा
0: रहे
1: है,
0: हैं।
1: क्या बात है।
0: अगर
1: तो मैंने सर ये आपके कहते कहते ही सॉन्ग निकाल लिया है।
0: जबरदस्त
1: मेजर मानिकम जौली आज के संदेश सुन के हमारे खास मेहमान, सेना मेडल सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, और मेजर मानिक की पसंद का ये ट्रैक आप भी एंजॉय करें हमारे साथ, बने रहें संदेश सोल्जर्स में, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आप सुन रहे हैं शाहिद की आवाज और मेरे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जौली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन। और ये गाना मेजर साहब की पसंद से हमने सुना सुरतम सौराब से। सर, यहाँ पर बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो तो उतना शायद जोशीला नहीं था, लेकिन जिस जोश से हम आगे बढ़े हैं तो प्रोग्राम खत्म होने का समय आ गया और अभी मेरे पास बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए बची हुई हैं। तो मैं मैसेजेस जो ऑलरेडी काफी सारे इकट्ठे हो गए मैं उनको बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं अभी आपसे ही जानना चाहूंगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी आपने एक काफी बड़ा समय दिया, एक बड़ा रोल प्ले करा, तो वो क्या था एक्सपीरियंस आपका, उसके बारे में बताइए।
1: तो शायद मिलिट्री इंटेलिजेंस में आप वॉलंटियर करते हैं कि मैं इसमें सर्विस करना चाहता हूँ, आपको 2 साल का प्रोबेशन रखते हैं वो।
0: अच्छा,
1: तो अराउंड 10-11 साल में MI में था, तो वहाँ पे मैं काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट था।
0: अच्छा।
1: और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, काउंटर इंटेलिजेंस की हमारी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए।
0: ओके।
1: इंटेलिजेंस जैसे होती है उनकी खबर लें, तो अलग अलग डोमेन में, और नॉर्थ मेरा डोमेन था तो उसमें वही नौकरी करी मैंने ज़्यादा। काफ़ी ऑपरेशंस किए हमने, काफ़ी देश में जो जासूस घूम रहे हैं काफ़ी पकड़े।
0: अच्छा।
1: तो इस तरह से मेन टास्क हमारा फिर ये होता है कि
0: कोई अगर इंट्रूडर है,
1: हाँ जी,
0: तो उसका पता लगाना और उसको पकड़ना।
1: या और हमारे जो बेसिकली कम्युनिकेशंस, इंटेलिजेंस का बेस इज कम्युनिकेशन।
0: ओके।
1: वहां से खबर आती रहे और यहाँ से खबर ना जाए। बाकी सारी दुनिया इसके अराउंड बनी हुई है। ये
0: दो पिलर हैं।
1: सो अपना अपना रोल सब प्ले करते हैं। तो उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन थी मेरी कम्युनिकेशंस की, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की, जो अभी मैं पढ़ाता हूँ और फौज छोड़ने के बाद तब से वही करते हैं
0: जी। तो सर, इसमें जो जो साइबर सेल का भी जो रोल रहता है, वो भी आपने सेटअप किया, उसमें भी आप शामिल रहे।
1: तो 2001-2002 में जब नया नया इंटरनेट आना शुरू हुआ था, तो सबको समझ आया था कि इंटरनेट से कम्युनिकेशन अब होगा।
0: ओके। ये वो जमाने की बात है।
1: चिट्ठी फोन पे चल रहा था सारा
0: काम। जी जी।
1: तो उस टाइम देश का आर्मी का रादर पहला साइबर सेल पुणे में मैंने सेटअप करा था। मैंने एक दो कोर्स करे थे, स्पेशली कोर्स करवाए साइबर इन्वेस्टिगेशंस के, एथिकल हैकिंग के, तो हमने समझा कि ये कैसे। तो उससे काफ़ी आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी नहीं आती है पहले पकड़ने की कोशिश करती है।
0: ओके।
1: ताकि हमें एक स्टेप आगे रहे।
0: हुँ.
1: तो फिर हमने साइबर सेल, साइबर पॉलिसी, इस पर काफ़ी काम किया।
0: अच्छा।
1: तो वो आज तक चल रहा है और काफ़ी अब तो बहुत डेवलप्ड है, पूरी डोमेन है।
0: बिल्कुल।
1: तो उस टाइम तो नया नया था
0: तो जाहिर है टफ भी रहा होगा उस टाइम पर, उसको सब मतलब स्ट्रीमलाइन करना, उसको एस्टैब्लिश करना,
1: समझने में टाइम लगता था,
0: समझने में टाइम
1: कैसे होता है
0: जी। तो सर, अभी ये सब चीजें तो हो गई आपकी।
1: ये वो वाला जमाना था शायद जब आप किसी से ईमेल मांगते थे, वो ईमेल के साथ पासवर्ड देता था।
0: अच्छा।
1: सच बता रहा, तो लोगों ने कहा पासवर्ड क्यों दे रखे था, फिर वो चेक कैसे करेगा।
0: अच्छा।
1: मतलब लोग धीरे धीरे समझ आए
0: कि भाई ये जो साइबर है ये किस तरह से काम करता है और इसमें कैसे सिक्योर रह सकते हैं। सर, इन सब चीजों के साथ साथ आप जो है ऑथर भी हैं, आपने किताब लिखी है कुपवाड़ा कोड्स, और इसके बारे में जरूर बताइए। इतना सब आपने किया, आप एक डायरिंग आर्मी ऑफिसर, इंटेलिजेंस पर आपने काम किया, काउंटर टेररिज्म पर आपने काम किया, आपको सेना मेडल से और दूसरे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, आपको पीएम मोदी के मिशन इनोवेशन के नेशनल चैंपियन के तौर पर भी आपको सम्मानित किया गया, अब आप ऑथर भी बन गए।
1: तो ये अभी मैंने एक

0: साल पहले लिखी थी, तो अपने सारे एक्सपीरियंसेस कुछ ऑपरेशंस को इकट्ठा करके मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, गोरखा गैरिसन,
1: अच्छा
0: जिसमें गोरखा यूनिट और कुछ इंटेलिजेंस वाले जम्मू कश्मीर में ISI और टेररिस्ट को ढूंढ रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: तो
1: तो ये एक
0: उसकी
1: स्टोरी है,
0: ये पूरी ये सीरीज
1: सीरीज
0: थी,
1: है।
0: ये फर्स्ट बुक थी उसकी, कुपवाड़ा कोड्स,
1: ओके,
0: जो कि पिछले साल आई थी और हार्पर कॉलेज के साथ है।
1: क्या बात है। तो सर,
0: तो
1: क्या आप चाहेंगे कि इसको मतलब हम OTT प्लेटफॉर्म या कहीं पर देखें इसको, अगर अब पिक्चराइज किया जाए इसको,
0: हाँ जी,
1: फिक्शन?
0: इट इज अ वेरी गुड स्टोरी। आई होप किसी दिन इस पे कुछ बने,
1: जरूर सर,
0: क्योंकि
1: जरूर,
0: हाँ
1: हमारी
0: जी
1: शुभकामनाएं, और हम जरूर चाहेंगे कि इस पर अच्छी आपके एक्सपीरियंसेस के साथ, जो इसमें एक्सपर्टीज के साथ जो आपने लिखी है ये, उसको जरूर पर्दे पर, छोटे पर्दे पर ही सही, लेकिन उतारा जाए और हम उसको देख पाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी आपने बातें करी, इतने अच्छे एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर करे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला, और 80वां देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो उसकी भी बहुत बहुत तमाम देशवासियों को, हमारे सुनने वालों को, और मेजर मानिक आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको
1: सर जाते
0: शायद।
1: जाते, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जाते जाते मैं सर आपसे अब ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कम से कम एक आपकी पसंद का गाना जरूर चलाऊं, जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आपके दिल से करीब है।
0: तो मैं आपको बताता हूं, जब NDA में थे तो एक पिक्चर रिलीज हुई थी बॉर्डर,
1: बॉर्डर, जी बड़ी
0: तो
1: फेमस,
0: उसका गाना था संदेशे आते हैं।
1: जी
0: संडे को दोपहर को हर कमरे में गाना चल रहा था,
1: अच्छा
0: और इस गाने आई डोंट थिंक फौजी लाइफ, फौजी इमोशंस को इस गाने से अच्छा कोई कैप्चर करता है।
1: क्या बात है सर।
0: तो मैं फर्स्टली आपको थैंक यू, आपके सभी लिसनर्स को जय हिंद,
1: सर लिसनर्स तो
0: और
1: हमारे अभी भी जुड़े हुए हैं और
0: हाँ
1: मैसेजेस आ रहे हैं।
0: हाँ जी, और स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं, और थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच सर आपके आने के लिए। यहां पर मेजर मानिक एम जॉली की पसंद का ये गाना हम छोड़ करके जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम सर को जाते जाते जो मैसेज, कुछ एक तो मैं कम से कम पढ़कर सुनाई दूं। सर हैट्स ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस शेयरिंग, विश वन लाइफ वी गेट अ चांस टू लिव 1% ऑफ योर लाइफ, प्लीज शेयर योर बुक फ्रॉम USA न्यू जर्सी। ये मैसेज आया है किसी का, और इनका नाम मुझे नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन इन्होंने सर बड़ा दिल से मैसेज करा
0: या
1: है आपको।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर मैसेज। जय हिंद आपको भी।
1: और सर ये मैसेज है, सर कैन वी ज्वाइन सीक्रेट सर्विस थ्रू NDA और आफ्टर NDA, ये पूछ रहे हैं सर। समय हालांकि खत्म हो गया, लेकिन मैं क्या करूं,
0: हाँ जी
1: मैसेज
0: हाँ जी,
1: आए।
0: जरूर जरूर, आप फौज में जाइए और कुछ भी ज्वाइन करें।
1: और सर ये मैसेज है, हेलो सर, RJN मेजर सर, जय हिंद जय भारत सर। जैसे आप जैसे महानुभाव की बातें सुनकर यूथ बहुत इंस्पायर होते हैं, उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है, आप सदा स्वस्थ रहें। मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से सर ये मैसेज आया है सर आपके शहर
0: अरे
1: से।
0: वाह, हमारे शहर से आए
1: जी
0: भाटिया जी, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद आपको भी।
1: और सर मेजर साहब को विजय कुमार त्रिचुरपल्ली की ओर से जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं सर, विजय कुमार है।
0: आपको भी विजय जी, जय हिंद आपको भी।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर एम जॉली हमारे साथ थे आज, वेटरन इंडियन आर्मी सेना मेडल से सम्मानित, और आप सुन रहे थे संदेश सौदश शाहिद के साथ।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ఇంతవరకు మనము ఆరోగ్య జీవనం శీర్షికలో కిడ్నీ వ్యాధులు నివారణ చర్యల గురించి ప్రముఖ నెఫ్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ ప్రియదర్శిని గారితో పరిచయం విన్నారు. పరిచయకర్త డాక్టర్ సాంబశివరావు కన్రాతి.
1: सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश.
2: वंदे मातरम. प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं. विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान. फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: हैदराबाद हार्टबीट, सिकंदराबाद वाइब, FM रेनबो ब्रिंग्स इट अलाइव। दैट्स राइट, वाइब्रेंट हैदराबाद इज योर इंफोटेनमेंट गेटवे टू एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड टाउन। म्यूजिक, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड सरप्राइजेस, ऑल पैक्ड इन वन वाइब्रेंट शो। सो whether you are chilling at Tank Bund or shopping at Charminar, stay tuned, stay bright. Vibrant Hyderabad on FM Rainbow 101.9.

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम, प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम, प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: talk on mental health and access to justice, care and human dignity, this talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
1: एक इंडिविजुअल ये नहीं समझता कि मुझे मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है या मुझे किसी से कनेक्ट करना है, तब तक नेक्स्ट स्टेप आता ही नहीं है. वी डू नॉट टेन टॉक अबाउट व्हाट राइट्स ही हैज और व्हाट वेयर ही कैन गो. जब भी हम अक्सर स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ, वेदर ही इज हेल्दी और नॉट, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं कि नहीं, एंड वी यूजली इग्नोर that the mental health aspect and the social. So WHO has identified that mental health is integral to health. So when we are talking about mental health, what is mental health? It's a complex process. क्या हम समझ पा रहे हैं मेरे साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, लाइफ में कितने सारे पड़ाव पड़ते हैं, are we able to cope up with those things, are we productive despite having to face various challenges in life. So

if we are able to do so, we would say that I'm mentally healthy, I'm able to deal with my mental health adequately. There are various situations in life, whether it is at workplace, family, with how we are connecting with other individuals, whether we are facing some legal battle or we are having shortage of funds, someone in the family is ill, or home environment or the school environment or the workplace is having problems. So in sab cheezon ko leke hum, some individuals may feel stressful, some individuals may feel that this is part of life. To hamare reactions alag alag hote hain. And at the same time, we need to understand that some amount of stress is important to drive us to face those challenges. Agar hamare paas ek bacche ke saamne exam ho hi nahi, to wo padega hi kyun? To exam ek tarah se uske liye stress bhi create karta hai, par dusre perspective se usko ek challenge bhi milta hai ki mujhe aage seekhna hai. But at the same time, after a certain amount of stress, we become dysfunctional. जिसको हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए एंजाइटी देता है, घबराहट देता है, एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग देता है. दैट इज द टाइम व्हेन वी नीड टू सीक हेल्प. इफ वी आर एबल टू फेस द स्ट्रेस एडिक्वेटली, वी आर फाइन. बट इफ वी आर नॉट एबल टू फेस द कोपिंग, वी आर नॉट एबल टू फेस दोज चैलेंजेस, देन वी स्टार्ट हैविंग हेडेक हो रहा है, मुझे बहुत थकान लगती है, मेरे को नींद नहीं आ रही है. सो दीज आर सम ऑफ द साइंस एंड कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम्स, वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल इश्यूज, क्योंकि अक्सर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी फिजिकल का नाम देते हैं. हमें महसूस यही होता है कि हमारे शरीर में थकान है, बट एक्चुअली द कॉज मे बी एट द मेंटल लेवल. ये कहना कि कब उदासीपन, डिप्रेशन मतलब एक क्लिनिकल डिसऑर्डर बन जाता है, एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है, बहुत कोई डिमार्केशन नहीं है. जनरली वी से दैट इफ इट इज परसिस्टेंट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ सैडनेस डिप्रेशन व्हिच इज अ वेरी कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, एंड इट इज सैडनेस या डिप्रेशन इज कॉमनली यूज्ड वर्ड अमंग द पब्लिक. सो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दीज साइंस? जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम शारीरिक कंप्लेंट्स देते हैं, मेरे हेडेक हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा नहाने का, मेरा को नींद ठीक से नहीं आती, या मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, या मेरा मन नहीं करता है खाना खाने को. सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल सोमेटिक कंप्लेंट्स दैट इफ वन इज फीलिंग दैट और वन इज रिपोर्टिंग, वी नीड टू टेक इट सीरियसली. सम ऑफ द बिहेवियरल साइंस इंक्लूड, देयर इज अ सडन, पेरेंट्स आके कहते हैं कि कई बार पता नहीं बिना प्रोवोकेशन के, बिना कोई किसी कॉन्टेक्स्ट के इरिटेबल हो जाता है, वापस जवाब देता है, या अननेसेसरीली शॉपिंग आजकल हो रही है, एक्सट्रीम्स ऑफ बिहेवियर विच वॉज नॉट देयर अर्लियर. सो एनी चेंज ओवर द टाइम विच इज नॉट देयर, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द फैमिली, दैट मीन्स देयर इज सम डिसबिहेवियर नीड्स टू बी attended to. At a social level, we don't want to interact with people, we don't want to respond to people, respond to family members. Choti choti cheezon ko leke hum nervous ho jate hain. Sometimes we say that mujhe lag raha hai ki bas zindagi ka ant aa gaya hai. So these kind of emotional responses also are a matter of concern and may be an indication for mental illness. So, मोटे तौर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो इररिस्पेक्टिव, दे कैन बी, दीज साइंस कैन बी ड्यू टू सम फिजिकल इलनेस, एंड दीज कैन ऑल्सो बी साइंस फॉर सम मेंटल इलनेस. हमारे रोजमर्रा का जो रूटीन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, कॉलेज जाने में छुट्टी अक्सर आ रही है, हम वर्क प्लेस से कोई ना कोई बहाना लेके जल्दी वापस आ जाते हैं, वी आर नॉट ईटिंग वेल, I get up in between at night, or there is a change in my interactive. पहले बहुत ज़्यादा socialization होती थी, अभी मैं मेरा मन नहीं करता है. So these are gross signs which may be due to any reason, but they are important to be picked. Some signs are specific to a particular disorder. ये सब कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत गंदा हूँ तो बार बार नहाते हैं, या बहुत ज़्यादा हाथ हैंड वॉशिंग होती है, तो OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. बच्चों में अक्सर स्कूल से रेफरल आते हैं कि बच्चे में बहुत ज़्यादा, वो सेवन्थ क्लास में पढ़ रहा है पर उसको अभी तक
ಸೆಂಟೆನ್ಸ್.

ना ना नहीं आता है, उसकी स्पेलिंग में एरर्स बहुत हैं, या मैथ्स में वो सेकंड क्लास का परफॉर्मेंस है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, तारे ज़मीन पर हम सब ने देखी है, एंड दैट इज़ वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस इज़ अबाउट. मेनी टाइम्स अनलाइक अदर इलनेसेस पीपल डू रिपोर्ट मेरे को बहुत डिप्रेशन रहता है, इट शुड बी टेकन सीरियसली, इट्स अ क्राई फॉर हेल्प दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल. अक्सर देखा गया है कि इंडिविजुअल्स हु डू ट्राई टू कमिट सुसाइड दे डू से दे वर्बलाइज देयर प्रॉब्लम्स, देयर हेल्पलेसनेस एंड दे सीक हेल्प, विच वी मोस्ट ऑफन इन आवर पीयर ग्रुप्स वी डू नॉट रिकॉग्नाइज लेटर ऑन, अरे उसने तो ऐसा कहा था. समटाइम्स इंडिविजुअल रिपोर्ट मुझे कुछ सुनाई देता है, हम हंस के उड़ा देते हैं बात को, दिस मे बी साइंस फॉर साइकोसिस. समटाइम्स वी से दैट बहुत एंग्जाइटी, बहुत घबराहट हो रही है, तो मुझे लगता है कुछ मिनट को लगा कि मेरा तो अंत आ गया, इट मे बी अ पैनिक अटैक.

0: सुनाई देता है, हम हंस के उड़ा देते हैं बात को. दिस मे बी साइंस फॉर साइकोसिस. समटाइम्स वी से दैट बहुत एंग्जाइटी, बहुत घबराहट हो रही है, तो मुझे लगता है कुछ मिनट को लगा कि मेरा तो अंत आ गया, इट मे बी अ पैनिक अटैक. सो वी नीड टू सीक हेल्प रादर देन फेस दैट मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे तो मैं नहीं जाता हूँ दिखाने. एट टाइम्स इफ इट इज पॉसिबल तो टीचर्स सेटिंग में या पेरेंट्स जो एजुकेटेड हैं, वी हैव स्मॉल स्मॉल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चनेयर विच कैन एक्चुअली टेल यू कि ये इस 10 आइटम्स में से इतना कट ऑफ 2 के ऊपर है, दैट मीन्स यू नीड टू कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. PHQ GAT 7 आइटम 9 आइटम्स, इट्स हार्डली एनीथिंग, वेरी सिंपल आइटम्स विच कैन बी यूज्ड इन कम्युनिटी.
1: You had been listening to a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. We slip into a short break.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 और 10 सेकेंड्स हो रहे हैं। पेश है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

मुशायरे के बाद नए रंग की बज्म सजेगी, गीत सुरीले गाते जासे, जिसमें पुराने फिल्मी गीत आप सुनेंगे। और फिर जनाब नदीम अख्तर जैदी के खूबसूरत से पयाम शब के साथ नैरंग की बज्म इख्तिताम को पहुंचेगी।

0: तो सामईन, ये थे आज की नशियात की तफसीलात। आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हर्फ ताबिंदा, तहरीर व पेशकश है जनाब नूरुद्दीन की।
1: क़ुव्वत-ए- फ़ैसला यानी डिसीशन मेकिंग पावर एक ऐसी जहनी और अखलाकी सलाहियत है जो इंसान को दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फ़ैसला करने की अहलियत अता करती है। यह सिर्फ अक्ल का खेल नहीं बल्कि तजुर्बा, बसीरत, जज्बाती तवाज़ुन और अखलाकी शऊर का इम्तिजाज है। दो बातों में अच्छा बुरा सोचकर अच्छी

0: मौजूद हैं, जिनमें जनाब सैयद समीउल्लाह हुसैनी समी, डॉक्टर तैयब पाशा कादरी और मोहतरम तशकील अनवर रज़ाकी साहब के अलावा आपका मेज़बान यानी मैं सरदार सलीम अपने कलाम से आप नवाजेंगे इंशाल्लाह। तो जश्न आज़ादी के इस मुशायरे की फ़ज़ा में आपको ले चलने से पहले दो शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की मिट्टी ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। अब आइए मैं सबसे पहले दावत सुगम देता हूँ हैदराबाद के जवां साल खूबसूरत लबो लहजे के शायर जनाब तशकील अनवर रज़ाकी साहब को।
1: गज़ल का मतला पेशी खिदमत है। चराग आज भी

0: गुस्सा है, क्या
1: गुस्सा
0: किया
1: है क्या किया जाए, ना कुछ

मैं जिसकी प्यास बुझाने को लाया हूँ पानी, मैं जिसकी प्यास बुझा

0: उसे एक शख्स से रंजिश बहुत है,
1: रंजिश तो बहुत है
0: लेकिन
1: लेकिन
0: उसी पे दिल मेरा शहदा है,
1: वाह
0: क्या किया जाए। गजल का आखिरी
1: जी
0: शेर है,
1: जी जी इरशाद।
0: न जुग

0: आज भी जलता है, क्या किया
1: वाह वाह वाह वाह
0: जाए।
1: वाह
0: दूसरी गजल का
1: जी,
0: एक मतलब आपकी
1: इरशाद
0: खिदमत
1: इरशाद
0: है।
1: इरशाद अता फरमाइए।

0: वाह वाह।
1: ये दरमियान में जो एक जमाना पड़ता है,
0: वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह।
1: हजारों साल की लंबी लकीर है जाना, ये दरमियान में जो एक जमाना पड़ता है। ये शेर भी था जगह थाले से। अमीर शहर की महफिल में जाने से पहले

फसले उगाना पड़ता है, जगह पे कांटों

0: बहुत खूब, बड़ी मुश्किल से आता है सलीका बात करने का, लबो लहजा तो क्या आवाज़ भी मुश्किल से मिलती है। ये थे जनाब तश्कील अनवर रज़ाकी साहब। अब आइए हैदराबाद के एक बहुत ही संजीदा सुलझे हुए मोतबर शायर जनाब सैयद समीउल्लाह हुसैनी समी साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, जनाब सैयद समीउल्लाह हुसैनी समी।
1: मोहतरम सामेन, चंद खतात जश्न आज़ादी के हवाले से आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, मुलाहजा कीजिए। सबसे पहला खता है कि बूढ़ा जवान बच्चा इस जंग में मरा था।
2: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: बूढ़ा जवान बच्चा इस जंग में मरा था, ईसाई और सिखों का इसमें लहू बहा था।
2: बहुत अच्छे समय,
0: वाह वाह वाह।
1: बूढ़ा जवान बच्चा इस जंग में मरा था, ईसाई और सिखों का इसमें लहू बहा था। हिंदू ने जान दी थी, मुस्लिम ने सर दिया था।

वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत मुरस्सा कलाम, बड़ी मोहब्बत, बड़ी अकीदत के साथ, हुब्बुल वतनी के नशे में डूबा हुआ। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब को। अब आइए, सरदार सलीम से कुछ शेर समात फरमाइए। अर्ज करता हूँ कि किसी परिंदे की ऊंची उड़ान जैसी है, किसी परिंदे की ऊंची उड़ान जैसी है, मेरे वतन की जमी आसमान जैसी है, मेरे वतन की जमी आसमान जैसी है, है इश्तियाक तुझे देखने का है जन्नत, है इश्तियाक तुझे देखने का है जन्नत, सुना है तू मेरे हिंदुस्तान जैसी है, है इश्तियाक, है इश्तियाक तुझे देखने का है जन्नत, सुना है तू मेरे हिंदुस्तान जैसी है। बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूँ कि किसी परिंदे की ऊंची उड़ान जैसी है, मेरे वतन की जमी आसमान जैसी है इश्तियाक तुझे देखने का है जन्नत, सुना है तू मेरे हिंदुस्तान जैसी है। अर्ज करता हूँ कि ऐ मादरे वतन तुझे मेरा खिराज है, ऐ मादरे वतन तुझे मेरा खिराज है, तू मेरी शान है, मेरी इज्जत है, लाज है, तू मेरी शान है, मेरी इज्जत है, लाज है, रोजाना 5 बार उसे चूमता हूँ मैं, रोजाना 5 बार उसे चूमता हूँ मैं, जो तेरी खाक है वो मेरे सर का ताज है, रोजाना 5 बार उसे चूमता हूँ, जो तेरी खाक है वो मेरे सर का ताज है। एक छोटी सी नज्म है, मेरा देश सुनिए, कि ये नदियों का, झीलों का, झरनों का देश, ये बागों का, फूलों का, कलियों का देश, इसे लोग कहते हैं हिंदुस्तान, ये है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का देश, ये गौतम का, नानक का, चिश्ती का घर, ये संतों, फकीरों का, वलियों का देश, ये मीरा, ये गालिब, ये खुसरो कबीर, ये गजलों का, गीतों का, दोहों का देश, लता आशा अलका कविता उषा, सुरीली रसीली सदाओं का देश, गुमा इस पे होता है फिरदौस का, ये है प्यारी प्यारी सी परियों का देश, बड़े खूबसूरत हैं जंगल यहाँ, ये शेरों का, हिरनों का, मोरों का देश, कोई आर्या भट्ट है, कोई कलाम, मेरा देश रोशन दिमागों का देश, है शामिल तेलंगाना इस देश में, खुली और उस्मा के ख्वाबों का देश, है सोने की चिड़िया मेरा ये वतन, यह है मोतियों और हीरों का देश, है उपजाओ धरती मेरे देश की, ये सरसब्जो शादाब खेतों का देश, यहाँ मिलके रहते हैं रामो रहीम, ना बांटो इसे, ये है अपनों का देश, यहाँ मिलके रहते हैं रामो रहीम, ना बांटो इसे, ये है अपनों का देश, रहे यूं ही आबाद सदियों सलीम, बने और सुंदर ये सपनों का देश, बने और सुंदर ये सपनों का देश। कुछ शेर गजल के अर्ज करता हूँ कि तेरा गुमान गलत है कि थक रहा हूँ मैं, तेरा गुमान गलत है कि थक रहा हूँ मैं, कि तेरे सीने में अब भी धड़क रहा हूँ मैं, कि तेरे सीने में अब भी धड़क रहा हूँ मैं, तेरा गुमान गलत है कि थक रहा हूँ मैं, कि तेरे सीने में अब भी धड़क रहा हूँ मैं। शेर देखिए कि मेरे सुकूत को तुम इंजमाद मत समझो, मेरे सुकूत को तुम इंजमाद मत समझो, कि लम्हा लम्हा पिघल कर छलक रहा हूँ मैं, कि लम्हा लम्हा पिघल कर छलक रहा हूँ मैं, जिन्होंने आग लगाई थी देख लें आकर, जिन्होंने आग लगाई थी देख लें आकर, कि जितना झुलसा हूँ उतना चमक रहा हूँ मैं, कि जितना झुलसा हूँ उतना चमक रहा हूँ। भाई शेर देखना, जमीन नाप रहा हूँ कदम कदम गिनकर, जमीन नाप रहा हूँ कदम कदम गिनकर, वो सोचते हैं कि यूं ही भटक रहा हूँ मैं, जमीन नाप रहा हूँ कदम कदम गिनकर, भाई साहब शेर सुनिएगा, जमीन नाप रहा हूँ कदम कदम गिनकर, वो सोचते हैं

0: है कि यूं ही भटक रहा हूं मैं, गई रुतों ने कुछ अच्छे नकूस छोड़े थे, गई रुतों ने कुछ अच्छे नकूस छोड़े थे, इसीलिए तो अभी तक महक रहा हूं मैं, इसीलिए तो अभी तक महक रहा हूं मैं। मैं खुश नजर हूं यही तो कसूर है मेरा, मैं खुश नजर हूं यही तो कसूर है मेरा, कि बद नजर की नजर में खटक रहा हूं मैं। मैं खुश नजर हूं यही तो कसूर है मेरा, के बद नजर की नजर में खटक रहा हूं मैं। आखिरी शेर है, जो मुझको भूल गया उसको याद करते हुए, जो मुझको भूल गया उसको याद करते हुए, अलाव बन के मुसलसल दहक रहा हूं मैं, अलाव बन के मुसलसल दहक रहा हूं मैं। आखिरी मकता है, सलीम चेहरों की पहचान हो गई मुश्किल, सलीम चेहरों की पहचान हो गई मुश्किल, के आईने को भी हैरत से तक रहा हूं मैं। सलीम चेहरों की पहचान हो गई मुश्किल, के आईने को भी हैरत से, जी जी, मैं खुश नजर हूँ यही तो कसूर है मेरा, के बद नजर की नजर में खटक रहा हूँ मैं।
1: बहुत
0: बहुत शुक्रिया। मैं तमाम शोराए किराम का और तमाम सामाइन का ऑल इंडिया रेडियो की जानिब से मुशायरे को शिरकत करने के लिए और कलाम सुनने के लिए और कलाम सुनाने के लिए दोनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तमाम भारतवासियों को, तमाम मुहिबान वतन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए इस महफिल के अख्तिताम का ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।
2: हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियाँ भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रही नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियां चलाओ।
3: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत कल रात यानी 14 अगस्त 2026 को आप सुन सकते हैं डॉक्टर आयशा सलमा गायनेकोलॉजिस्ट से लिया गया इंटरव्यू पोस्ट डिलीवरी प्रिकॉशंस पर। सामाइन सुनना न भूलें डॉक्टर साहिबा के जरीन मशवरे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो पर उर्दू प्रोग्राम नए रंग में।
2: ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। स्टूडियोज की घड़ी में 10:07 और 28 सेकंड्स हो रहे हैं। सामईन, बादलों ने आसमान पर डेरे डाल रखे हैं, रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है, मौसम बेहद सुहाना है। मौसम तो खूबसूरत है, हल्की फुल्की बारिश ने गर्मी को दूर कर दिया है, लेकिन सड़क पर सफ़र करते दौरान हम सबको एहतियात बरतना भी ज़रूरी है। जब भी गाड़ी चलाएं तो एहतियात से गाड़ी चलाएं, हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें और मुमकिन हो तो तेज़ रफ्तारी के बजाय आहिस्ता से गाड़ी चलाने को तरजीह दें, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। उर्दू प्रोग्राम नैरंग में आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत

101.9 MHz पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। समय बेशक हल्की सी बारिश ने मौसम को खुशगवार कर दिया है। बारिश बेशक रहमत है और फिलहाल जो मौसम है वो गरम गरम चाय के साथ नैरंग प्रोग्राम सुनने का है। लेकिन अगर आप रास्ते में हैं, अगर आप सफ़र कर रहे हैं, दफ्तर से अपने घर लौट रहे हैं, तो आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। सड़कों पर फिसलन और ट्रैफिक जैम भी हो सकता है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस का मशवरा है कि सफ़र के दौरान यानी गाड़ियां चलाते वक्त गाड़ियों की रफ्तार धीमी रखें, ब्रेक एहतियात से लगाएं ताकि कोई भी हादसा पेश ना आए। बारिश में विजिबिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए हेडलाइट्स ऑन रखें। और ऐसे इलाके जहां पर पानी जमा होता है या फिर ऐसे इलाके जो नशेबी इलाके हैं वहां जाने से गुरेज करें। जल्द घर पहुंचने की फिक्र में अपनी और दूसरों की जान को खतरे में ना डालें।

समीन फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से लिया गया प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग अपनी रेडियो दोस्त आयशा बतुल अफशा के संग। स्टूडियोज की घड़ी में 10:18 और 54 सेकेंड्स हो रहे हैं। अब वक्त हो चला है आपके हम सब के पसंदीदा प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जाका। समीन, आज जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक पुराना ख़त मिला और

उस खत को देखकर मुझे वो जमाना याद आ गया जब जिंदगी इतनी तेज रफ्तार नहीं थी। हम ये कह सकते हैं कि हर चीज में एक ठहराव था, रिश्तों में खुलूस था। आइए आज के गीत सुरीले गाते जा में हम यादों के दरीचे खोलेंगे और उस वक्त की बात करेंगे जब अपने प्यारों को खत लिखे जाते, खत के जवाब का बेसब्री से इंतजार किया जाता, साथ साथ कुछ फिल्मी नगमे भी हम सुनेंगे। समय क्या आपको याद है, डाकिये का आना किसी ईद से कम नहीं होता। दरवाजे पर दस्तक होती और डाक आई है कि आवाज सुनाई देती तो चेहरों पर खुशी देखने के काबिल होती। खत लिफाफे में बंद होकर मिलते, बंद होकर हम तक पहुंचते, जिन पर टिकट चस्पा हुआ करते। दूर दराज से भेजे गए खत जज्बात और एहसासात का निचोड़ हुआ करते। खत लिखने के लिए अल्फाज का, स्याही का, कागज का इंतखाब इंतहाई एहतियात से किया जाता। हम ये कह सकते हैं कि खत लिखने का बाज़ाब्ता एहतमाम किया जाता और फिर खत लिखने के बाद जवाब का इंतजार होता। शायद आज ये बात अजीब लगे लेकिन उस इंतजार में भी अपनाइत छलकती। खतों किताबत के बारे में और भी बातें करेंगे और भी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आवाज़ें हैं लता जी और किशोर कुमार की।

समय ना आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाते जा और हम बात कर रहे हैं खतों किताबत की। समय हमने ये भी देखा है कि खत लिखने का बाज़ाब्ता से इंतज़ार किया जाता, खत लिखने का बाज़ाब्ता से अहतमाम किया जाता और फिर जब खत भेजा जाता तो फिर उसके जवाब का बेचैनी से इंतज़ार किया जाता, डाकिये का इंतज़ार होता और जैसे ही डाकिये की आवाज़ आती लोग खुशी जाहिर करने लगते। रफ्ता रफ्ता वक्त बदला, जमाने ने तरक्की की, खत की जगह टेलीग्राम और टेलेक्स ने ले ली, फिर आए लैंडलाइन फोन और अब तो दुनिया सिमट कर हमारे हाथों में ही है, बल्कि ये कहिए कि फिंगर टिप्स पर आ गई है। स्मार्टफोन, व्हाट्सएप, ईमेल्स और फेसबुक मैसेजेस का जमाना आया, डाकिये का वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। अब तो एक सेकंड से कम वक्त में हमारे पैगामात समंदर पार पहुंच जाते हैं, लम्हों में जवाब भी आ जाता है, रबते आसान हो गए हैं लेकिन फासले भी सिमट गए हैं। और हकीकत यह है कि जज्बात की गहराई, वो खुलूस, वो अपनाइत कहीं पीछे ही छूट गई है। रफ्तार तो तेज़ है मगर ठहराव नहीं है। हमने अपने बड़ों को खत संभाल कर रखते देखा है, संदोखचों में दहाइयों पुराने खत देखे हैं जिन्हें वो यादगार के तौर पर महफूज रखा करते थे, लेकिन आज के पैगामात बस एक क्लिक पर गायब हो जाते हैं। मोबाइल की मेमोरी फुल होने पर उन चैट्स को डिलीट कर दिया जाता है। टेक्नोलॉजी ने हमें जोड़ तो दिया है लेकिन जज्बाती तौर पर एक दूसरे से जुदा कर दिया है। समय खतों की दावत पर और भी बातें करेंगे लेकिन आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आवाज़ है आशा जी की।

101.9 MHz पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग अपनी रेडियो दोस्त आयशा बतुल अफशा के संग। समय इन गीत सुरीले गाते जामे हम बात कर रहे हैं खतो किताबत की। तो आपने सुना किस तरह से चिट्ठी या खत हमारे जज्बात, एहसासात, ख्यालात और हालात बयान किया करते, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इस राब्तों को, एहसासात को, ख्यालात को मुख्तसर कर दिया है। जो खत लिखे जाते जज्बात बयान करने के लिए कई कई सफ़ों का इस्तेमाल होता, तवील खत लिखे जाते, हालात को बयान किया जाता, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में जज्बात सिर्फ इमोजी से बयान होने लगे हैं। पहले एक खत पूरे ख़ानदान को जोड़ कर रखता, एक ही खत आता जिसमें सबके नाम कुछ ना कुछ पैगाम लिखा होता, और अब जो ज़माना है सारा ख़ानदान एक ही कमरे में बैठा नज़र आता है, लेकिन हर फर्द मोबाइल में गुम होता है। तरक्की ज़रूरी है, वक्त के साथ चलना भी ज़रूरी है। वक्त का पहिया रोकना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन इस भागदौड़ में हम अपने जज्बात और एहसासात का और ख्यालात का इजहार करने में अब कोताही बरतने लगे हैं। जो लोग खत व किताबत किया करते थे उसके जो एहसासात होते, उनकी जो जुस्तजू होती, उनकी जो सोच होती, उसे बयान करना शायद मुश्किल है। जो खत अपने किसी प्यारे को अपने हाथ से लिखे जाते, उस खत की जगह ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक मैसेजेस या कोई और सोशल मीडिया का जरिया नहीं ले सकता। हाथ से लिखे गए खत की बात ही कुछ और होती। समय खत व किताबत पर बातचीत करने का सिलसिला जारी रहेगा। आइए सुनते हैं एक और नगमा।

सामईन, आप सभी सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, अपनी रेडियो दोस्त आयशा बतुल अफशां के संग। स्टूडियोज की घड़ी में 10:49 और 37 सेकंड्स हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं खत व किताबत की। वक्त बदल गया है, टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को तेज रफ्तार बना दिया है। खत व किताबत की जगह अब डिजिटल पैगाम ने ले ली है, लेकिन मोहब्बत, चाहत और रिश्तों में खलुस मौजूद है और मौजूद रहना भी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि हम टेक्नोलॉजी की इस तेज रफ्तार दुनिया में अपने अपनों के लिए वक्त निकालें, चाहे खत लिखे या ना लिखे, कम से कम एक फोन कॉल ही कर ले या फिर उनसे मुलाकात ही कर ले, क्योंकि रिश्तों को बरकरार रखने के लिए राब्तों का होना जरूरी है। भले ही तवील खत क्यों ना लिखे जाए, पैगामात ही भेजे जा सकते हैं, उनसे मुलाकात की जा सकती है, एक फोन कॉल भी किया जा सकता है।

शिकायतें भी बहुत हैं, हिकायतें भी बहुत, मज़ा तो जब है कि यारों के रूबरू कहिए। ज़िंदगी में इख्तलाफात और शिकवे हर शय का, हर रिश्ते का हिस्सा होते हैं, मगर असल किरदार ये है कि इंसान दूसरों की गैर मौजूदगी में इनकी बुराइयां न करे। अगर किसी से शिकायत है तो इज़्ज़त, मोहब्बत और हिकमत के साथ उसी के सामने बयान करें। पीठ पीछे की जाने वाली बातें दिलों में फासले पैदा करती हैं, जबकि रूबरू की जाने वाली गुफ्तगू बहुत से गलत फहमियों का खात्मा करती है। सच्चा दोस्त वो है जो सामने इसलाह करे, ना कि पीछे गइबत। इख्तलाफ को दुश्मनी ना बनाए, मुकालमे का रास्ता इख्तियार करें। ताल्लुकात एतमाद से मजबूत होते हैं, चुगलखोरी और बदगोई से नहीं। जो बात सामने कहने की

0: कि हिम्मत ना हो उसे दूसरों के सामने दोहराने से भी गुरेज करना चाहिए। रिश्तों की हिफाजत खामोश नाराजगी से नहीं बल्कि एहतराम के साथ की गई साफ गोई से होती है। शिकायत अगर दिल में है तो उसे महफिलों में नहीं मुतालिका शख्स के सामने मोहब्बत और हिकमत से बयान कीजिए।
1: समय इस खूबसूरत से प्याम शब के साथ ही उर्दू प्रोग्राम नए रंग इख्तिताम को पहुंचता है। शब बखैर।

0: स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन

0: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।
1: Market Mantra।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amrit Saxena.
1: Namaskar. Market Mantra कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और अब आइए सुनते हैं पहले मुख्य समाचार.
0: Benchmark domestic stock market indices end on a mixed note. Sensex gains over 100 points. Nifty settles below 24,400. Parliament passes a Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 to create a uniform and balanced fiscal framework for the mineral sector. And global crude oil prices fall.
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा. सेंसेक्स ने 100 अंकों की बढ़त दर्ज की. निफ्टी 24,400 के नीचे बंद हुआ. संसद ने खनिज क्षेत्र के लिए एक समान और संतुलित वित्तीय ढांचा बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम गिरे. और आज की खबरों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एस पी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: जी शुक्रिया.
1: और चलते हैं आज की पहली खबर की ओर. घरेलू शेयर बाजार आज मिले जुले रुख के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 78,080 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 40 अंक यानी 0.16% गिरकर 24,396 पर बंद हुआ. विस्तारित बाजार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप 100 इंडेक्स में 0.1% से अधिक की बढ़त हुई और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 0.3% बढ़ा. दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स सुस्त रहा. हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन एडजस्टमेंट के बाद इसने अपनी गिरावट की भरपाई की और बढ़त के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स के फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की साप्ताहिक एक्सपायरी ने भी उतार चढ़ाव को बढ़ाया. इसके विपरीत भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच निफ्टी पूरे सत्र के दौरान नकारात्मक दायरे में रहा.
0: We'd also like to remind our listeners on a disclaimer before we move on to the headline stories. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And let's continue with the detailed stock story. In the Sensex pack, 19 out of the 30 companies registered gains. The benchmark domestic equity indices end on a mixed note today. Sensex registered a gain of 114 points to close at 78,080. Nifty declined 40 points or 0.16% to settle at 24,396. In the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index gained over 0.1% and the small-cap 100 index rose 0.3%. Sensex traded on a subdued note during the intraday trade. However, it erased its losses and closed higher following the closing auction session adjustment. The weekly expiry of the futures and options contracts of Sensex also added to the volatility. Conversely, Nifty remained in the negative zone throughout the session amid lingering geopolitical uncertainties.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखी गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंडिगो 2.8%, एनटीपीसी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 2% और लार्सन एंड टूब्रो में 1.9% से अधिक की वृद्धि हुई. वहीं दूसरी ओर आईसीआईसीआई बैंक में 1.3% की गिरावट आई. टाइटन 1% गिरा और रिलायंस में 0.8% की गिरावट आई.
0: एंड इन द सेक्टोरल

0: Indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 28 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, telecom as well as FMCG added 1%, realty rose 1.5%, and services gained 0.8%. In contrast, metal declined nearly 1%, commodities as well as insurance shed 0.5%, and top 10 banks fell 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive. As shares of 2,192 companies advanced, 2,127 companies declined, and 226 companies remain unchanged.
1: और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 10 पैसे गिरकर 95 रुपए 44 पैसे पर बंद हुआ. डॉक्टर शर्मा, शेयर बाजार का हाल हमने आज देखा, जिस तरह का उतार चढ़ाव रहा और सेंसेक्स ने और निफ्टी ने अलग अलग प्रदर्शन किया, आप क्या कहेंगे?
2: जी बिल्कुल, काफ़ी जो वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं मार्केट में, मुख्य कारण तो कंसोलिडेशन है कि मार्केट सभी कंसोलिडेशन मोड में है. अनसर्टेनिटी है, कोई डायरेक्शन मार्केट को भी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिक्स है, जो ईरान और यूएस में जो युद्ध है, वो किसी भी शेप में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा. कई बार आपको लगेगा कि शायद अब पीस हो रही है, कई बार लगेगा कि युद्ध बहुत ही गहराने के मुकाम पे पहुंच चुका है. तो उसी के संदर्भ में जो मार्केट्स हैं वो कुछ भी डायरेक्शन लेने से वंचित हैं. फिर भी फंडामेंटल्स, जब कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आती है तो मार्केट्स एकदम से बहुत रिबाउंड करती हैं, जिसे हमें ये लगता है कि जब अगर पीस हो जाती है, अगर यूएस और ईरान में पीस हो जाता है, तो मार्केट्स में एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड की पॉसिबिलिटी बहुत ज़ोरदार है, बहुत ही मजबूत है, क्योंकि जैसे हल्की सी बात से ही मार्केट्स बहुत स्ट्रांगली रिबाउंड करती हैं. लेकिन जो हमारा जो एक फंडामेंटल जो एक ट्रैजेक्टरी है, चाहे वो इन्फ्लेशन है या फिर हमारे एक्सपोर्ट्स हैं या फिर हमारा ग्रोथ ऑफ आईआईपी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑल आर इन दी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी एंड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. ओवरऑल जो हमारी मार्केट्स की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है, बट विद अ वॉलेटाइल सिनेरियो.
0: डॉक्टर शर्मा, यू स्पोक अबाउट द फंडामेंटल्स. द क्वार्टरली रिजल्ट्स are being declared right now, the earnings of companies, and we've seen bellwether companies do very well as well in terms of their net profitability and revenue. We saw heavy buying by DIIs today to the tune of 4,353 crore rupees. They were the net buyers in the market today. What were the principal reasons for that type of stimulus buying? Because if you look at the FIIs, they are on the margin right now. They're net sellers of 511 crore rupees. And even on the economic front, which we will go into some detail later in this program, their growth, especially of G7 countries, is not that great. And a lot of these hedge fund investors are still seeing India as the right alternative for the investments.
2: Yes, Arjun. Firstly, why the FIIs are not that much strong? That is the major reason, because they are observing the volatility in the global markets. Sometimes they invest in another country where their some scoop is coming with the deceleration in the market, and then again they look at India when there is some correction in the market, great correction. So they are taking advantage of many markets in the global ecosystem. But our DIIs are very much confident. They are providing a balancing act to the market. They invest very strongly when there is a correction, and their investments are more stable as compared with FIIs, as they are more confident about the Indian market. They are not in a speculative spree. They are investing in the fundamentals of a great growth story. So that is the difference between the DIIs and FIIs. FIIs are always volatile. Since the last many decades, their movement is always volatile, but our retail participation again is very strong, and they are providing a good support to the market at various junctures. When there is correction, they come forward for buying the good stocks. So going forward, I believe our market will be majorly driven by our DIIs and our retail segment.
0: Dr. Sharma, the closing auction session adjustment has also taken place, and I know that you understand the derivatives market quite well. We have been discussing the cash market all this time. What does the weekly expiry of the futures and options contracts telling you about the premium levels of the contracts that

0: the investors are looking to get into when they try to make a projection of how the cash market is going to perform in the coming week and in the coming month?
1: Yes, this is, I believe, the actual story of the derivatives in the Nifty or the other stocks. And I would say the recent development that the that is taking place, that is providing the more stability to the contracts. And I am observing some stability in the minds of the investors also. They are not that much speculative about the market movement. They are behaving in a balanced approach because the premium level has come down significantly. And this is providing a great room for the actual hedgers to provide a support to their cash market. So I believe this is a great development. I really appreciate this movement by the regulator that now speculation is coming down, and that will be the scenario of the losses in the F&O segment by the retailers, which I observed during the last many years. They were in a speculative spree and getting some losses also, but now that trajectory is expected to be balanced with such a development which has taken place.
2: और डॉक्टर शर्मा, अगर हम क्षेत्रों की सेक्टर्स की बात करें तो खासतौर से आईटी या इंफ्रास्ट्रक्चर के जो शेयर हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी हद तक बाज़ार को संभालने में मदद की, और आप जो अलग अलग सेक्टर्स की परफॉर्मेंस को लेके क्या जानकारी देना चाहेंगे?
1: देखिए, जो जो हमारे सेक्टर्स हैं, जो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हों या फिर एनर्जी के स्टॉक हों या फिर बैंकिंग के हो या फिर फार्मास्यूटिकल और आयरन एंड स्टील, सभी का योगदान जो है हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो लक्ष्य है जो हम आगे तय करने जा रहे हैं विकसित भारत की तरफ, जो हमें एक अच्छा रूट डेवलपमेंट चाहिए, एक अच्छी स्ट्रांग हमें एक एनर्जी सिनेरियो हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे बैंकिंग प्रणाली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. तो इन्हीं के संदर्भ में हमारे ये जो लगभग कोई 10 से 12 सेक्टर्स हैं, ये बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं. लेकिन ये ज़रूर है कि जब कोई इंटरनेशनल मार्केट में करेक्शन आती है तो इनके ऊपर भी उसका दबाव आता है, क्योंकि जब सेलिंग होती है दैट क्रिएट्स समटाइम पैनिक इन द माइंड्स ऑफ द रिटेलर्स. लेकिन उसमें हमारा रिटेलर भी अभी धीरे धीरे बहुत समझदार होता जा रहा है कि वो उतनी पैनिक अवस्था में नहीं आता. आप देखो कि पीछे कितने महीनों से, स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी टू नौ अगस्त, 6 महीनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत उथल पुथल है, लेकिन मार्केट फिर भी एक रेंज बाउंड सिचुएशन में है. मार्केट ने वो करेक्शन, जो एक बहुत ही ऐसी करेक्शन होती है जो कि बहुत डीप जाती है और कई बार प्रभावित करती है, वो ऐसी करेक्शन हमने नहीं देखी. मार्केट हमेशा स्टेबल रहती है. अगर 2 दिन मार्केट डिसेलरेट करती है तो उसके बाद 2 दिन आगे बढ़ भी जाती है, उतनी बढ़त वापस हासिल कर लेती है.
0: डॉक्टर शर्मा, वी सीन दैट निफ्टी बैंक हैज बीन क्वाइट बुलिश, बट टुडे देयर वाज अ करेक्शन ऑफ 250 पॉइंट्स इन द बैंकिंग सेक्टर, व्हिच इंक्लूड्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक sector banks. Is this just profit booking today, or is there any development?
1: No, I see this is a profit booking only. There is no such development that is providing correction opportunities. But this always happens when the investor shifts from some stocks to the other stock. When they book profit in the profitable ventures or the sectors, then they enter in the other sector. That is the churning aspect of the market. So I would say this is the positive development that they are making profits and shifting to the other sectors also.
0: Well, that was our discussion on the stock market. Let's move on to some more news. Parliament has passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act of 1957. More from our correspondent.
3: The Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. The centre, through the bill, also seeks to take under its control the regulation of mineral-bearing lands having mineral contents in accordance with the parameters prescribed under the Mines and Minerals Development and Regulation MMDR Act. The government has ensured transparency and conducted auctions to manage these mining resources properly. The minerals are national

0: Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 to create a uniform and balanced fiscal framework for the mineral sector and global crude oil prices fall. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से गीत के साथ जिसे आवाज़ दी है आशा भोसले ने।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र संपन्न हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में कल लाइबेरिया के नए दूतावास का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली में लाइबेरिया का स्थायी मिशन शुरू होना भारत लाइबेरिया संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किले के पास हुई आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता, आवाज है आशा भोसले और दिलराज कौर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कुछ लम्हे आगे नहीं बढ़ते, वे बस भीतर कहीं ठहर जाते हैं। ना कोई आवाज देते हैं, ना ही खुद को जताते हैं, पर जब भी याद आते हैं दिल को हल्का सा छू जाते हैं। ये वही बातें हैं जो कहीं नहीं गई पर महसूस पूरी हुई, और शायद इसलिए वो ठहराव भी कुछ समय के बाद अपना सा लगने लगता है। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में जो अगला गीत आप सुनेंगे, आवाज है महेंद्र कपूर और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है आदमी और इंसान।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है लीडर, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

कुछ पंक्तियां हम लिखते तो हैं पर पूरा नहीं करते। कुछ पंक्तियां हम लिखते तो हैं पर पूरा नहीं करते। जैसे दिल में एक खत शुरू होता है पर आखिरी शब्द कभी कागज पर उतर नहीं पाता। कागज खाली नहीं होता, वो बस इंतजार करता है उन जज्बातों का जो कभी पूरी तरह कहे नहीं गए। कभी किसी नाम पर कलम रुक जाती है, कभी किसी नाम पर कलम रुक जाती है और वही ठहराव सबसे ज्यादा कुछ कह जाता है। जो पूरा लिखा जाता है शायद उतना खास नहीं होता जितना वो अधूरा रहकर भी सब कुछ कह जाता है। क्योंकि हर कहानी अंत तक पहुंचे ये जरूरी नहीं, कुछ एहसास बीच में रुककर ही एक खूबसूरत याद बनकर हमारे दिल में रह जाते हैं। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और अगला गीत फिल्म शर्मिली से, आवाज है लता मंगेशकर की।

कुछ बातें मन की ऐसी होती हैं जो शब्दों तक आते आते, या यूं कहें कि शब्दों में ढलते ढलते रुक जाती हैं, होठों के किनारों तक आकर वापस लौट जाती हैं, जैसे उन्हें भी डर हो कहीं सुन ली गई तो टूट न जाए। हम अक्सर चुप रहते हैं क्योंकि कहना आसान नहीं होता, और जो महसूस होता है वो हर बार समझाया नहीं जा सकता। कई बार एक ठीक हूं के पीछे पूरा समंदर छिपा होता है जिसे कोई देख नहीं पाता। वो जो दिल में रह जाता है वो अधूरा नहीं होता, वो बस थोड़ा निजी होता है, और शायद इसलिए हर बात कह देना जरूरी नहीं, कुछ एहसास चुप रहकर ही अपनी पूरी गहराई में जीते हैं। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और अगला गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म संगम से।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयति। और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है सावन को आने दो, आवाज है यसुदास की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। मिलते हैं 1:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र संपन्न हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्याय

0: अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बियासोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में कल लाइबेरिया के नए दूतावास का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली में लाइबेरिया का स्थायी मिशन शुरू होना भारत लाइबेरिया संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिन्दी में प्रसारित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाउश्किन ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस अवसर पर स्नेहा नामक ई बुक भी जारी की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish B. Abraham. The monsoon session of Parliament has concluded, with both houses being adjourned sine die yesterday. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfill its core legislative duties.

सागर नहीं पर लहरों सी कपकपी है, कविता नहीं पर हर पलक पर एक शेर लिखा है, काजल की रेखा न सीमा है न सजावट, वह तो बस एक बहाना है उस गहराई को छिपाने का जिसे कोई माप नहीं सकता, पलकों के झुकने में एक विनम्र संकोच है और उठने में एक अडिग स्वीकृति कि जो भी है वो सत्य है और वही सुंदर है। इस नयन में ना कोई पुकार है ना कोई शिकायत, फिर भी एक अनुगुंज है जो हृदय के सूने गलियारों में देर तक ठहरती है। यह मौन शब्दों से अधिक मुखर है, यह स्थिरता आंधियों से अधिक प्रबल, यह स्थिरता आंधियों से अधिक प्रबल। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

एक नयन में जलती है, एक नयन में जलती है धीमी सी अदृश्य अग्नि। न शब्दों की लपट, न ध्वनि का कोई कंपन, बस भीतर भीतर सुलगती हुई अनुभूति। माथे की वह बिंदी जैसे किसी प्रार्थना का अंतिम बिंदु, जहां जाकर थम जाती हैं सब इच्छाएं और शुरू होता है एक मौन विश्वास। यह आंख आकाश नहीं, पर उसमें तारे ठहरे हैं,

नजर में समाया है, एक ही नजर में समाया है अनगिनत ऋतुओं का आवागमन। कभी वसंत की मृदुलता, कभी पतझड़ की खामोशी। ये आंख किसी की प्रतीक्षा में नहीं, फिर भी हर क्षण प्रतीक्षारत सी लगती है। मानो कोई नाम इसके भीतर जन्म लेना जानता हो। और अंततः जब सब कुछ थम सा जाता है, समय भी विचार भी, तब यही नयन धीरे से कहता है कि सौंदर्य कहां नहीं जाता, बस देखा और महसूस किया जाता है। अगला गीत जो आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है अप्रैल फूल।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है लैला मजनू। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कभी जो आहटों में कोई नाम सा लगे तुम हो, कभी जो आहटों में कोई नाम सा लगे तुम हो, कभी जो धूप में भी ठंडी शाम सा लगे तुम हो। मेरी नजर ने हरेक चेहरा टटोला खामोशी से, मेरी नजर ने हरेक चेहरा टटोला खामोशी से, किसी के लफ्ज में एक मीठा पैगाम सा लगे तुम हो, किसी के लफ्ज में एक मीठा पैगाम सा लगे तुम हो। मैं जब भी खुद से भागी किसी मोड़ की तरफ, मैं जब भी खुद से भागी किसी मोड़ की तरफ, वहीं ठहर कर जो, वहीं ठहर कर मिला जो मुकाम सा लगे तुम हो, कभी जो आहटों में कोई नाम सा लगे तुम हो, कभी जो धूप में भी ठंडी शाम सा लगे तुम हो। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर और सी रामाचंद्रा की, फिल्म का नाम है आजाद। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। कितनी सुंदर बात किसी ने कही थी कि प्रेम भी तुम दोस्त भी तुम, प्रेम भी तुम दोस्त भी तुम, एक भी तुम और अनेक भी तुम, गुस्सा भी तुम माफी भी तुम, जिंदगी के सफर में काफी हो तुम। जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है ना जब जिंदगी की परिभाषा कुछ ऐसे लिखी जाती है। मन का मौसम बड़ा सुंदर सा हो जाता है जब लिखने वाले जिंदगी में चाहे जैसे भी अनुभव हो पर परिभाषा जिंदगी की खूबसूरत लिखते रहते हैं। वक्त आ चला है कि आपको हम ये भी याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप एफएम गोल्ड पर सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर और कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़ जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है शर्मिली, आवाज है किशोर कुमार की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बियासोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में कल लाइबेरिया के नए दूतावास का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली में लाइबेरिया का स्थायी मिशन शुरू होना भारत लाइबेरिया संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवम्बर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. The monsoon session of Parliament has concluded, with both houses being adjourned sine die yesterday. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfill its co-legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up.
1: Earlier, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 was passed by the Parliament, with the Rajya Sabha approving it yesterday. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है क्रांति।

जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती, वो मुड़ती है, रुकती है और फिर चुपचाप नई दिशा पकड़ लेती है। हम हर मोड़ पर जवाब ढूंढते रह जाते हैं, जबकि रास्ते सिर्फ चलने से बनते हैं। कभी ठहर कर देखो तो समझ आएगा, हर उलझन हमें रोकने नहीं, बस थोड़ा बदलने आई थी। जो बहता है वही सहज पाता है खुद को, जो अटक जाता है वो खुद में ही उलझ जाता है। इसलिए जरूरी नहीं कि हर बात एक ही बार में समझ आ जाए। कुछ सफर बस महसूस करने के लिए होते हैं। जब हम हर सवाल का जवाब छोड़ देते हैं, तब कहीं जाकर जिंदगी अपने असली रूप में समझ आने लगती है। अगला गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म बॉर्डर से।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आपके साथ हूं मैं जयती। अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है उपकार और आवाज है महेंद्र कपूर साहब की, तो आइए सुनते हैं ये गीत आप सभी के साथ।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सिंदूर और आवाज है मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। हाथ थे मिले के जुल्फ चांद की सवार दू, हाथ थे मिले के जुल्फ चांद की सवार दू, होठ थे खुले कि हर बहार को पुकार दू, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दू, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दू, और सांस यूं की स्वर्ण भूमि पर उतार दू, और सांस यूं की स्वर्ग भूमि पर उतार दू, हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दू। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है चश्मे बद्दूर, आवाज है यसुदास और हेमंती शुक्ला की, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाय की अनुमति, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र संपन्न हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बियोसोलोव न्यांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें

0: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवम्बर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुशिन ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर इलाके में एक अवैध ड्रग निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार निदेशालय की कार्रवाई में 30 किलोग्राम अवैध ड्रग बरामद की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. The monsoon session of Parliament has concluded, with both houses being adjourned sine die yesterday. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the public examinations, Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfill its co-legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up.
1: Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has accused the opposition of running away from discussions in Parliament when the government was ready for it. He said the conduct of opposition MPs is not good for democracy, especially for parliamentary democracy. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Rijiju said that Parliament is meant for debate, discussion and legislative business, but continuous sloganeering and protests had affected the functioning of the House in the monsoon session. Mr. Rijiju said that 12 bills were passed during the monsoon session, but only one of them was discussed in both houses. He stated that during this session, productivity stood at 19% in the Lok Sabha and 39%

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 3:11 और 4 सेकंड। हमराही कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला नगमा आपके लिए।

दोस्तों, कभी कभी किसी का हमारी जिंदगी में आना सिर्फ किसी इंसान का आना नहीं होता, बल्कि अपने साथ खुशियों का आना होता है, उम्मीदों का आना होता है, जिंदगी में फिर से रंग भर जाना होता है। वो शख्स आता है तो लगता है जैसे सूने आंगन में बहार आ गई हो, जैसे अंधेरी राहों में रोशनी उतर आई हो, जैसे दिल को फिर से मुस्कुराने की वजह मिल गई हो। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत।

दोस्तों जानते हैं, वादे करने तो करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन वक्त बदलने पर भी उसे निभाना सच्ची मोहब्बत होती है।

0: जब किसी की छोटी छोटी बातें भी अच्छी लगने लगे, उसकी मुस्कान का इंतजार होने लगे और उसकी मौजूदगी में वक्त जैसे ठहर जाए, तो समझ लीजिए दिल ने अपना रास्ता चुन लिया है।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 3:31 और 56 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

कभी कभी प्यार भी कितना मासूम होता है ना, ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत, बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देना और नजरों ही नजरों में दिल की बात कह देना। एक तरफ कोई चुपचाप अपने दिल की बात छुपाए बैठा है और दूसरी तरफ कोई उसी दिल की आवाज समझने के लिए इंतजार में है।

दोस्तों, कभी कभी किसी अपने की आवाज में ऐसा अपनापन होता है कि दूरियां भी छोटी लगने लगती है। वो पुकारे तो लगता है जैसे कोई अपना हमें याद कर रहा है। वो आवाज सुनाई दे तो दिल कहता है बस अब और इंतजार नहीं। मोहब्बत में साथ होना ही जरूरी नहीं, कभी कभी किसी की एक आवाज भी बहुत होती है ये एहसास दिलाने के लिए कि हम अकेले नहीं हैं। और जब दिल को किसी की पुकार का इंतजार हो तो हर खामोशी में उसी आवाज की आहट सुनाई देती है। चलिए सुनते हैं एक ऐसे ही एहसास भरा गीत।

दोस्तों जानते हैं, जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, बल्कि बस कोई ऐसा हो जो हमारे अच्छे दिनों में ही नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी हमारा साथ दे, जिसके साथ खामोशी भी अच्छी लगे, जिसके साथ छोटी छोटी खुशी भी बड़ी लगने लगे और जिसके होने से दिल का ये भरोसा रहे कि रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन ये शख्स हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत।

तो दोस्तों, अपने अपनों का हाथ थामे रखिए, प्यार को संभाल कर रखिए और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते रहिए। और मुझे यानी मीना चौहान को हमराही कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार, 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिन्दी में प्रसारित होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा एकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में करीब 15 आतंकवादी मारे गए और कई अन्य घायल हुए। पुलिस के अनुसार पुलिस और सुरक्षा बलों का एक संयुक्त काफिला डुबंदो चेकपोस्ट की ओर जा रहा था। इसी दौरान अपर दीर जिले के बारीकोट गांव के पास आतंकवादियों ने काफिले पर हमला करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 15 आतंकवादियों को मार गिराया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइन पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है प्रातः के 4:11:07। अरुणिमा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हमें अपने दिल को रोकना पड़ता है, हर उस चीज के पीछे भागने से जो हमारी नहीं है, हर उस इंसान के लिए खुद को परेशान करने से जो हमारी कद्र नहीं करता। दिल को समझाना आसान नहीं होता, लेकिन याद रखिए, हर चाहत पूरी हो जाए ये जरूरी नहीं। कुछ चाहतों को छोड़ देना ही सुकून की शुरुआत होती है।

किसी का साथ मिलना जिंदगी की खूबसूरत बात होती है, लेकिन ऐसा साथ मिलना जिसमें वक्त गुजर जाए, मौसम बदल जाए, हालात बदल जाए और फिर भी रिश्ता वैसा ही बना रहे, वो बहुत खास होता है।

यादों का मतलब हमेशा उदासी नहीं होता। कुछ यादें हमें ये भी सिखाती है कि हमने जिंदगी में कितना खूबसूरत वक्त जिया है। इसलिए अगर आज किसी की याद आपको थोड़ी उदास कर रही है ना, तो मुस्कुराइए, क्योंकि कुछ रिश्ते हमारे साथ रहकर भी हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना जाते हैं। और शायद इसी खूबसूरत एहसास का नाम है याद, जो दूर होकर भी दिल के बहुत पास रहती है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 4:37 और 57 सेकेंड। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

कभी कभी आंखें वो कह जाती है जो होंठ कह नहीं पाते। एक नजर में अपनापन होता है, एक नजर में विश्वास, और कभी कभी उसी नजर में पूरी कहानी छुपी होती है। लेकिन जिंदगी में सिर्फ किसी की नजरों का इंतजार करते रहना ही काफी नहीं, हमें अपनी आंखों में भी अपने सपने सजाने चाहिए। लोगों की नजरें बदल सकती है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नजर अपने लक्ष्य पर टिकी है ना, तो रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल जरूर मिलेगी।

दोस्तों, हर इंसान की आंखों में कोई ना कोई सपना जरूर होता है। किसी का सपना अपने परिवार को खुश देखना है, किसी का अपनी पहचान बनाना और किसी का बस इतना कि जिंदगी में सुकून और सम्मान के साथ जी सके। लेकिन सपनों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन्हें पूरा करने के लिए किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। आज का एक छोटा सा कदम ही आपकी जिंदगी में नयापन ला सकता है। रास्ते में मुश्किलें जरूर आएंगी, लोग सवाल भी करेंगे, कभी खुद पर आपको शक भी होगा, लेकिन याद रखिए, जो इंसान अपने सपने पर विश्वास करना नहीं छोड़ता ना, उसके लिए देरी हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, मगर मंजिल असंभव नहीं होती। इसलिए अपनी आंखों में सपने सजाइए, दिल में उम्मीद बचाए रखिए और कदम आगे बढ़ाते रहिए।

दोस्तों कहते हैं ना कि घर से दूर जाने वाला इंसान सिर्फ अपना शहर नहीं छोड़ता, वो अपने पीछे बहुत सारी यादें भी छोड़ जाता है। परदेश में चाहे कितनी भी रोशनी हो, दिल को अपने घर के आंगन की वही छोटी सी रोशनी याद आती है। माँ की आवाज, पिता की डांट, भाई बहन की शरारतें और दोस्तों के साथ बिताए वो बेफिक्र पल, सब कुछ याद आता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि दूरी चाहे हजारों किलोमीटर की हो जाए, अपनों से जुड़ा दिल कभी दूर नहीं होता। जो लोग आज अपने परिवार से दूर है ना, किसी दूसरे शहर या देश में अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बस इतना कहना है कि हौसला रखिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन वही दूरियां आपको फिर अपने घर की चौखट तक ले आएंगी।

दोस्तों, दूरियां चाहे कितनी भी हो, सच्चे रिश्ते कभी दूर नहीं होते। कुछ लोग हमारे पास नहीं होते, लेकिन हमारी हर धड़कन में मौजूद रहते हैं। तो जहां भी है, खुश रहिए, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहिए और अपनों से जुड़े रहिए। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी हिंदी में प्रसारित होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों और असहनीय पीड़ा झेलने वालों के सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इससे पहले कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नेयांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा एकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर

पख्तूनख्वा प्रांत में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में करीब 15 आतंकवादी मारे गए और कई अन्य घायल हुए। पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों का एक संयुक्त काफिला डुबंदो चेकपोस्ट की ओर जा रहा था। इसी दौरान अपर दीर जिले के बारीकोट गांव के पास आतंकवादियों ने काफिले पर हमला करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 15 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद इलाके को घेर लिया गया है और बाकी आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 5:11 और 6 सेकंड। हमराही भोर सुहाने कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी सब

दोस्तों, सुबह हो चुकी है, रात पीछे छूट गई है और एक नया दिन हमारे सामने है। हर नई सुबह हमें मौका देती है बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का। जिंदगी में परेशानियां तो आती रहती हैं, कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी मुश्किल, लेकिन जरूरी ये है कि हम मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराना ना भूले, क्योंकि खुश रहने के लिए जिंदगी का बिल्कुल सही होना जरूरी नहीं है। कभी कभी हमें जो मिला है ना, उसी में खुशी तलाशना सीखना पड़ता है। तो आज सुबह अपने दिल से सारी उदासी निकाल दीजिए, चेहरे पर मुस्कान लाइए और अपने इस नए दिन का स्वागत पूरे उत्साह के साथ कीजिए। और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

दोस्तों, सुबह का ये नया दिन हमें एक बहुत खूबसूरत बात याद दिलाता है। जिंदगी को सिर्फ गुजारना नहीं, उसे जीना भी है। हम अक्सर छोटी छोटी परेशानियों में उलझकर उन खुशियों को भूल जाते हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं। कभी अपनों की मुस्कान में खुशी ढूंढिए, कभी सुबह की ठंडी हवा में महसूस कीजिए, कभी किसी पुराने गीत के साथ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है और इसका हर पल दोबारा लौटकर नहीं आता है। मुश्किलें आएंगी, रास्ते बदलेंगे, कभी मन उदास भी होगा, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि

इंसान दुनिया के सारे दरवाजे खटखटाकर थक जाता है और फिर उसे याद आता है कि एक दरवाजा ऐसा भी है जो हमेशा खुला रहता है, यानी कि मेरे कान्हा जी का दरवाजा। जब मन में कोई बात कहने वाला ना होना तो कान्हा से कह दीजिए, जब आंखों में आंसू हो तो उनके सामने बह जाने दीजिए, और जब रास्ता दिखाई ना दे तो बस उनका नाम लेकर आगे बढ़ते रहिए।